0: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel, at all protected.
3: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
4: Four beers, please, garçon!
3: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
5: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं. ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा. संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com.
6: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर.

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410। साफो ट्रेवल at all protected.
2: Packed for the trip? Gifts? Passport?
3: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
2: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
3: Simzy?
2: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
4: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
5: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
0: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ, सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

0: लाइका गोल्ड
1: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
2: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
1: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
2: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
1: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
2: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50 प्लस एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
1: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000
2: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02039635757 Greens by Danube Prime location
1: High appreciation
2: In Dubai
3: Mom, I'm outside. Yes, literally just landed.
4: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
3: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
4: And you didn't pay those massive roaming charges?
3: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
5: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries.

मन्ने सगल पवन की सुध, मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए, मन्ने मग ना चले पंथ, मन्ने धर्म से ती

वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

गान पंडत पढ़न रखी सर, जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मनमोहन सुरगा मच प्याले, गावन रतनु पाए तेरे अड़सठ तीर्थ नाले।

तेरे भगत रसाले होर के ते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

अनाहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घटघट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरासा।

जोर ना जीवन मरण न जोर, जोर ना राजमाल मंसोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए, राती रुती चित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान, नदरी करम पवै निशान, कच पकाई उथे पाए, नान गया जापै जाए।

0: discount on all shows and tickets.
1: Exclusive radio partner, Like Our Radio.
2: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com। T&Cs apply.
3: Across Greater London, this is

बिक जाए पगड़ी मेरी चाहे बिक जाए हल, ले दूंगा तू जो मांगे एक बार ठुमक के चल। जरा लचक लचक के, जरा मटक मटक के, लट

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Like a Gold, Traffic and Travel.
2: Good morning. We still have problems on the Bakerloo line this morning. Signals are out of action at the Wilston Junction, means there's no service currently between Queen's Park and Harrow and Wilston as a result. On the to the roads, the A2 New Crossroads through New Cross currently closed due to an earlier accident. It's closed at New Cross Gate Station. A local diversion is in operation for traffic there. Through Streatham, the A23 Streatham High Road also closed as a result of an earlier accident at Streatham Hill Station. And A235 Brighton Road as well through South Croydon closed due to an earlier accident between Mansfield Road and Hayling Park Road, with diversions currently in operation for traffic there.
3: Lotto from the National Lottery now gives you two chances to win with every ticket. So it could be you, and it could be you. You, and then the same you, again. You. One ticket, two chances to win. New Lotto. It could be you, and it could be you. See website for Lotto changes. Rules apply. Players must be 18 or over.
4: Yeah.
5: Like a gold.
4: Like a gold.
6: Welcome to the jungle.
7: Film? Bilkul fake.
6: Hamari film army wali.
8: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है.
7: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो.
6: और स्टार कास्ट है
7: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास.
9: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
7: वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास 26 जून.
10: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना
11: मैं किस लिए फिल्म में.
12: Great news, Tadikalal Rainers Lane is now open. Come and grab our incredible opening offers. Fresh chicken legs for just £2.99 per kilo or 5 kilos for only £10. But hurry, this amazing deal is available while stocks last. Plus, you'll find plenty of more fantastic offers in store. Visit us today at Tadikalal Rainers Lane, 287 Rainers Lane, Pinna, HA5 5EJ. Quality, value and freshness only at Tadikalal Rainers Lane.
13: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे. कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस. कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344 Our line.
14: वेडिंग्स, सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 0208-839-0880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
15: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on diwalistory.com.

0: लिमिटेड ऑफर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: आ सप्टेम्बर पेरिस मा इतिहास लखाई रह्यो छे।
2: बीएपीएस मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर।
1: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स
2: फ्रांस स्विट्जरलैंड इटली अने जर्मनी साथे
1: दर्शन पण अने यूरोप पण।
2: सीट्स जल्दी भराई रही छे, आज ज बुक करो स्टार टूर साथे।
1: कॉल 02089002323 द स्टार टूर्स।
2: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
3: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 p.m. with the best tunes, mind games, and a bit of Yeah Yavo. Only on Like a Gold. Ta-ta.

0: काजल्स मॉर्निंग मंत्रा प्रेजेंटेड बाय मंत्रा हॉलिडेज योर फ्रेंडली हॉलिडे पार्टनर फॉर यूके यूरोप एंड अदर डेस्टिनेशंस फॉर योर मेमोरेबल हॉलिडेज अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड बजट कॉल 0203-773-633 टू बुक योर ड्रीम हॉलिडे। ये है Like a Gold
1: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 और visit TravelHubWorld.com.
2: TravelHub best service with unbeatable price.
1: At all protected.
2: Visit TravelHubWorld.com.
3: Search is changing.
4: Customers aren't just using Google anymore.
3: They're asking AI.
4: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
3: One business, one recommendation.
4: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
3: Will your business be the answer?
4: Or the one that got left behind?
3: The future of search has already started.
4: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
3: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
0: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
5: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
0: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
5: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
6: फादर सन नो बॉन्ड जितलो स्पेशल छे इटली ज स्पेशल फिल्म आवी रही छे।
7: अंकल तमे पहला थी आवाज छो।
8: आवाज એટલે કેવા?
6: धर्मा प्रोडक्शंस प्रेजेंट्स जिंदगी वंस मोर।
8: मारो बाप बनवानी कोशिश करत तू बुद्धि वेची आवे छे तू? अरे जिंदगी एवी मौज थी जीवजे के जिंदगी खुद तने आवी ना पूछे।
6: आ फादर्स डे फील द इमोशंस लव एंड फैमिली मोमेंट्स विद जिंदगी वंस मोर इन सिनेमास ऑन 19 जून। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम।
8: तो थई जाए जिंदगी वंस मोर।
9: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
10: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ। आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे, जहां मड़शे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो। डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलिडेज। कॉल करो 0203-773-633। मंत्रा हॉलिडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा।
11: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
12: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें Leica Radio Sales ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@leicamedia.co.uk. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: इज लाइक अ गोल्ड। ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: विजिट ट्रेवल हब world.com।
2: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.

0: कल्याण जी आनंद जी के म्यूजिक पर दिलीप कुमार और लीना चंद्रावरकर पर पिक्चराइज था ये गाना, जिसे लिया था फिल्म बैराग से जो 1976 में आई थी। और उससे पहले तुम आ गए हो नूर आ गया है, अपने जमाने का क्लासिक गाना जिसमें किशोर दा की आवाज और म्यूजिक आरजी बर्मन का। दो गीतों के साथ प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है। आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद रेडियो जो है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और जहां कहीं भी हमारे साथी हमारा साथ दे रहे हैं, सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। और आप सबको बता दूं कि इस शो में रवि शर्मा जी होते हैं आपके साथ, लेकिन वो हॉलीडेज पर गए हैं, इसलिए उनकी जगह ऋतु शर्मा आपका साथ दे रही है। और एक बजे तक हमारा और आपका साथ यूं ही बना रहेगा।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आपको याद दिला दें कि भारत पैसा भिजवाना चाहते हैं तो वाया एस बी आई ब्रांच ऑनलाइन बाय यूजिंग द योनो एस बी आई यू के मोबाइल ऐप। देन आज वन पाउंड आपको देगा 124.5 भारतीय रुपए। और जून के खत्म होने से पहले पहले आप जीत सकते हैं 75 pounds वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1000 pounds, ऑल्सो अ 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 pounds। टर्म्स एंड कंडीशंस ड्यू अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai
3: Leica Gold.
2: Leica Gold.
3: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: तो भाई आपको बता दें कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 चल रहा है और आज बहुत सारे मैचेस हैं। आज ग्रुप बी में बॉस्निया और कतर खेलने वाले हैं, ग्रुप सी में स्कॉटलैंड और ब्राज़ील के बीच में मैच है, ग्रुप के में कोलंबिया डीआर कॉन्गो, ग्रुप बी में स्विट्जरलैंड कनाडा एंड मोरक्को और हेटी के बीच में आज मैच होगा, एंड ग्रुप एल में पनामा एंड क्रोएशिया की टीमें भिड़ेंगी। और आपको ये भी याद दिला दें कि आप भूलना मत बिल्कुल भी अपनी 15 मिनट्स की फ्री लीगल एडवाइस विद अवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
4: When you're facing a serious snack dilemma, Tesco Whoosh has you covered.
5: Dave, we're out of peanuts.
4: We hear you, footy fan. Your Whoosh driver is already on it, delivering anything you need from Tesco from as little as 20 minutes. Because no team player can support from the sofa without nibbly bits. Tesco Whoosh, for when you seriously need groceries fast. Fees apply. Delivery times range from 20 to 60 minutes. Selected areas only. Pricing specific to Whoosh. See tesco.com/whoosh.
6: Ye hai Leica Gold. 10:35 a.m.

0: और आज हमारे बहुत सारे साथी गर्मी से बचने के लिए भी यही कह रहे होंगे कि रब्बा मैनू बच्चा। आज मौसम वाकई में बहुत गर्म है। आज अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। ठंडी ठंडी आइसक्रीम, ठंडा ठंडा जूस, लस्सी, नींबू पानी, कोल्ड कॉफ़ी, जो भी आपको पसंद है, आज का दिन है, अपनी सारी इच्छाएँ पूरी कर लीजिए, क्योंकि साल में ऐसी गर्मी कम ही आती है। तो आज सब कुछ माफ़ है, आज जी भर के जो पसंद है खा लीजिए। लेकिन हाँ, अगर आपको कुछ परेशानी है तो बस ये मत कहना कि ऋतु ने कहा था इसलिए मैंने खा लिया। लेकिन अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो भाई ध्यान रखिए, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बिंदास खाइए, मज़े के साथ खाइए, और इस वेदर को ठंडी ठंडी चीज़ें खाकर कूल कूल रहकर इंजॉय कीजिए। आज बहुत गर्मी है, लेकिन हमारे साथियों के मैसेजेस में कोई कमी नहीं है। आपने ढेर सारे मैसेजेस भिजवाए हैं जो ये बता रहे हैं कि आप मेरे साथ हैं, और ये जानकर मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है हमेशा ही। थैंक यू तोची पनेसर जी, आपका मैसेज मिला है। महेंद्र जी धन्यवाद। शेखर, मिसेस शेख जी, शेखर आनंद जी स्वागत है। अर्जुन जी, बुशी से जगदीश जी, वियाना से अनिल सोनी जी, वटफट से कपिल जी, और आपने एक जोक भेजा है। हाँ, क्योंकि आज वेंसडे है और हंसने हंसाने का दिन है, तो चलिए आपका जोक पढ़ लेती हूँ। उसमें लिखा है, पति दारू पीकर रात को घर देरी से पहुँचा तो पत्नी हाथ में झाड़ू लेकर सामने खड़ी थी। तो पति उसको देखकर बोलता है, कितना काम करेगी तू, ला झाड़ू मुझे दे दे, रात के 12 बजे हैं, सोना नहीं है। ये बातें सुनकर बेचारी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। कैन यू बिलीव इट, लेकिन अच्छा था। थैंक यू बट थ्रोट से कपिल जी जोक के लिए। हमारे साथ हैं शशि पटेल, वल्लभ विद्यानगर, गुजरात से। गुजरात में तो बहुत गर्मी पड़ रही है, लेकिन हमारे यहाँ भी कुछ कम नहीं है, टक्कर की गर्मी है आज। लेकिन स्वागत है शशि भाई आपका। मृदु, आपका स्वागत है। नरेंद्र भाग्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, और आपने भी कुछ अर्ज किया है। क्या अर्ज किया है, लिखते हैं, हैप्पी वेंसडे। कितना अधूरा लगता है तब जब बादल हो और बारिश ना हो, जब जिंदगी हो और प्यार ना हो, जब आंखें हो और ख्वाब ना हो, और जब कोई अपना हो और पास ना हो। हाय हाय, क्या बात कह दी आपने, थैंक यू, थैंक यू इन चार लाइनों के लिए। और इसके अलावा हमारे साथ हैं हमारी प्रज्ञा, हमारे राजीव जी, महेंद्र पटेल जी क्रॉयडन से, सहर जी हमारे साथ है, गिरीश जी भारत में शो सुन रहे हैं, हंसा वोरा जी थैंक यू, वजाहत एलेक्सा में सुन रहे हैं, जासदू जी हैं, मिसेस फेके चियांग कहती हैं, मैं नींबू पानी बना रही हूँ। क्या बात है, मैंने कहा ना यही मौसम है इन सब चीज़ों को पीने का, इंजॉय कीजिए। भरत गंगा राम जी हमारे साथ है, दिव्या जी, एंड ऑफ कोर्स हमारी अरुणा जी, सभी का स्वागत है इस शो में। Feel good track brought to you by Dairy Valley. Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com. Manoranjan with Ravi Sharma. Like a जी हाँ बिल्कुल, आप अपना मनपसंद रेडियो स्टेशन सुन रहे हैं जो है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स, और जहाँ पर आज ऋतु शर्मा एक बार फिर से आपके साथ है, सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी। और अब समय होता है आज के प्रमुख समाचारों का। तो सबसे पहले आपको दुनिया के प्रमुख समाचार बताते हैं। ईरान से खबर आ रही है कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल पर कड़ा रुख है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने साफ कर दिया है कि ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स को लेकर अमेरिका या किसी भी ग्लोबल पावर से कोई समझौता या डील नहीं करेगा। ईरान ने कहा है कि वो अन्य इस्लामिक देशों के साथ आपसी सम्मान और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल न देने के सिद्धांत पर रिश्ते बढ़ाने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के क्षेत्र की सुरक्षा के इंतजाम बाहर से नहीं लाए जाने चाहिए, ये स्थानीय स्तर पर की जाए और क्षेत्रीय सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। उधर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान मंगलवार को पाकिस्तान पहुंचे, और इस दौरान शहबाज शरीफ ने उनके साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बैलिस्टिक मिसाइलों पर कोई चर्चा नहीं हुई है, ये बिल्कुल भी बातचीत का विषय नहीं था। उन्होंने कहा कि दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए, ये संभव है कि दूसरों के पास मिसाइलें हों और ईरान के पास ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि MOU में बैलिस्टिक मिसाइलों का कोई जिक्र नहीं है और वो इस बात को बिना किसी भ्रम के स्पष्ट करना चाहते हैं। उधर ब्रिटेन की राजनीति में हलचल हो रही है। ब्रिटेन की एक संसदीय समिति ने सरकार को चेतावनी दी है कि रशिया और चीन से बढ़ते सिक्योरिटी थ्रेट्स के बीच देश की रक्षा रणनीति यानी कि डिफेंस स्ट्रेटजी और राष्ट्रीय सुरक्षा बजट को तेजी से बढ़ाने की जरूरत है। गाजा संकट पर यूएन की रिपोर्ट आई है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन ने एक स्वतंत्र आयोग ने गाजा में बच्चों को निशाना बनाए जाने को लेकर एक गंभीर रिपोर्ट जारी की है, जिसे इजरायली सरकार ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। यूरोप में हीट वेव का कहर जारी है और इस भीषण गर्मी में सबसे अधिक प्रभावित देशों में फ्रांस, स्पेन और इटली शामिल हैं। स्पेन में तो कुछ जगहों पर तापमान 40 डिग्री से ज्यादा तक पहुंच गया है, वहीं कल ट्यूसडे को फ्रांस में औसत टेम्परेचर 29.8 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया और ये जून महीने का अब तक का सबसे ज्यादा गर्म दिन है। और आज यूके में टेम्परेचर 40 डिग्रीज को टच करने जा रहा है और देखते हैं कि कल हमें पता चलेगा कि टेम्परेचर 40 डिग्रीज तक ही रहा या कितना ऊपर गया या थोड़ा कम रहा। और इस हीट वेव के कारण सभी लोग काफी परेशान हैं और अपने आप को सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है। ब्रिटेन की क्लाइमेट चेंज कमेटी ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि तेजी से इलेक्ट्रिफिकेशन ना होने के कारण यूरोपीय देशों में घरेलू ऊर्जा बिल यानी कि होम एनर्जी बिल्स लगातार बढ़ रहे हैं। और उधर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने नया रिकॉर्ड बनाया है। पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इंटरनेशनल स्टेज पर एक बार फिर से नया इतिहास रच दिया है। चलिए अब कुछ खबरें सुनाते हैं आपको भारत से आने वाली प्रमुख खबरें। मुंबई में भारी बारिश और वाटर लॉगिंग हुई है। मुंबई में रात भर हुई मूसलाधार बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया है, जिससे सुबह ट्रैफिक और डेली लाइफ काफ़ी प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने मानसून के आगमन की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। केरल से खबर आ रही है कि केरल उच्च न्यायालय ने साफ किया है कि केवल भगवान या ऑफिशियल लीगल फॉर्मेट के अलावा अन्य किसी नाम पर ली गई जनप्रतिनिधियों की शपथ अमान्य होगी। कोर्ट ने 20 पार्षदों को फिर से ओथ लेने का निर्देश दिया है। राम मंदिर चंदा विवाद पर राजनीति हो रही है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट के चंदे और कथित वित्तीय विसंगतियों से जुड़े ऑडिट रिपोर्ट को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उधर बिहार में भारत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर आज बिहार के शाहपुर में एक बड़ी महापंचायत बुलाई गई है, जिस पर एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन की कड़ी नजर है। और नेदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा भारत के फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल फ्रॉड सिक्योरिटी मॉडल का अध्ययन करने के लिए मुंबई और दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां वो पीएम मोदी से भी मिल सकती हैं। और नीरव मोदी पर ब्रिटेन की अदालत का ऑर्डर आया है कि ब्रिटेन की एक कोर्ट ने भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया का बकाया पैसा लौटाने का सख्त आदेश दिया है। और आपने सुना होगा कि कल पद्म भूषण से कई प्रसिद्ध व्यक्तियों को सम्मानित किया गया और अलका याग्निक भी उनमें से एक हैं। बहुत भावुक हो गई जब उन्हें राष्ट्रपति के हाथों पद्म भूषण सम्मान मिला और उन्होंने कहा कि ये करोड़ों श्रोताओं का भी सम्मान है। मशहूर प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक पद्म भूषण सम्मान मिलने के बाद उन्होंने खुशी और आभार व्यक्त किया है और उन्होंने लिखा है कि पिछले 2 वर्षों से मैं सुर्खियों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और अपनी निजी यात्रा को लोगों के साथ साझा करने से दूर रही हूँ। इस दौरान मैं स्वास्थ्य संबंधी कठिन दौर से गुजर रही थी, लेकिन प्रशंसकों के प्यार, प्रार्थनाओं, संदेशों और अटूट समर्थन ने हर कदम पर मेरा साथ दिया है। आपको बता दें कि देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म भूषण प्राप्त करना, अलका जी कहती हैं, मेरे लिए बेहद सम्मान और विनम्रता की बात है। और यही थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार अब समाप्त हुए।
1: ये है Like a Gold Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
2: अरे भंग का रंग जमा हो चका चक फिर लो पान चबा।

0: ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोका नूडल्स, क्विक टेस्टी हेल्दी फ्लेवर्स, परफेक्ट फॉर माय बिजी डे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
2: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
3: तो चलिए आपको याद दिला दें कि समर का टाइम है, आप हॉलिडे जाना चाहते हैं तो साउथॉल ट्रैवल से कांटेक्ट कर सकते हैं। और दुबई के लिए जो रेस्ट्रिक्शंस लगे थे वो अब हट चुके हैं, तो आप दुबई के लिए अच्छी डील्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसेस बुक करा सकते हैं। दुबई से जाने के लिए फोन करना होगा साउथॉल ट्रैवल को 0208-574-8410 पर। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
4: When you're facing a serious parenting dilemma, Tesco Whoosh has you covered. Babe, we're running low on nappies.
5: We hear your cries, Sarah.
4: And theirs. Your Whoosh driver is already on it, delivering anything you need from Tesco from as little as 20 minutes. Because no new parent should have to face a poon army without backup. Tesco Whoosh, for when you seriously need groceries fast. Fees apply, delivery times range from 20 to 60 minutes, selected areas only, pricing specific to Whoosh, see tesco.com/whoosh.
6: This is Leica Gold. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays, humse sasta kahin nahi mil sakta. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
7: TravelHub, best service with unbeatable price.
6: At all protected.
7: Visit TravelHubWorld.com.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
9: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
10: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
11: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
10: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
11: And you didn't pay those massive roaming charges?
10: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
12: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100+ countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
13: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एस रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में। रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमरस्मिथ। हमारे राम।
14: बुक योर टिकट्स नाउ ऑन eventimapollo.co.uk एंड यूज कोड हमारे राम 10 फॉर 10% डिस्काउंट ऑन ऑल शोज एंड टिकट्स।
13: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक Our radio,
15: the voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India,
16: live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
15: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
16: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
17: डिवोर्स या कस्टडी का इश्यू, इसे अकेले फेस मत करें। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जल्दी एक्शन लेते हैं। अभी कॉल करें 0208-907-2444। आज ही एक्शन ले 0208-907-2444।
18: Be part of a historic grand opening.
19: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
18: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
19: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
18: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
20: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
21: London, good news! आपका फेवरेट iTag अब TRS Cash and Carry South Hall में। Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. Full iTech at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB2 4AX. Once you visit, you come again and again.
2: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Like a Goon, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagoon.com.
22: Hi, मैं हूँ अश्विनी। हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइक अ गोल्ड रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी। फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग आप सभी के लिए।

0: लीजिए, मिलते हैं इस गाने के बाद न्यूज के उस पार चिंतन के साथ.
1: Across Greater London, this is Leica Gold, 10:35 AM, DAB and online, a part of the Leica Radio Network.
2: Top stories this hour. Hundreds of schools are closed as a red danger to life extreme heat warning takes effect across parts of England and Wales. There's disruption on the trains. Temperatures could hit close to 40 degrees Celsius. People are being warned they face fines for sitting with the aircon on in stationary cars. There are also increased health risks, particularly among the vulnerable. Some people in South East London opted for an early morning swim.
3: I've got a 2-year-old. It's definitely like the nights, obviously, kind of the sleep is definitely impacted.
4: Because of the heat wave. It's going to be much easier to look after your kids at home if it's very hot at school.
5: The contrast between winter and summer is horrendous.
2: Oldham, Bradford and Keighley and London have been named as the first local investigation areas in a national grooming gangs inquiry. Individuals and institutions will have to explain what they did or didn't do to protect children from being sexually abused. The biggest ever NHS maternity investigations expected to find failures at every level contributed to babies and families suffering harm in Nottingham. The reviews looked at around 2,500 cases. Kim Errington was one of the first campaigners to raise the alarm after her child Teddy died when he was a day old.
4: I always felt that something was wrong. You know, healthy babies don't just die. Getting the actual answers was an absolute mission.
2: A murder investigation's been launched after a man's body was found during a summer solstice event in the Peak District. The 26-year-old was discovered at Nine Ladies Stone Circle in Stanton. Andy Burnham's route to Downing Street appears clearer after Darren Jones ruled himself out of the race to become Labour leader. Meanwhile, former minister under Tony Blair, James Purnell, has confirmed he's likely to become Mr. Burnham's chief of staff. And F1 champion Lando Norris says it's surreal to meet his waxwork in Madame Tussauds in London. It'll be on public display from next Tuesday. From Sky News, I'm Chris Milligan.
1: This is Leica Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group.
6: Welcome to the Coral Fan Zone, where the fans are playing the free Coral Rewards Shaker. Brazilian shaking with trademark flair, Shakinho. The American shaking for supersized rewards, Tasty. And the English managing to shake under the weight of expectation. Looks like a free bet's coming home. Get a guaranteed free bet or offer every day this World Cup with Coral's Rewards Shaker. Coral, we're here for it.
7: 18 plus UK, max one reward or offer per player per day. Available from 9 a.m. to 9 p.m. Restrictions and T's and C's apply. Gambleaware.org.
8: Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
0: गुड मॉर्निंग, आइए बात करते हैं आज के मौसम की. और आज मौसम काफी गर्म है. लंदन में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्रीज को टच करने जा रहा है और मिडलैंड्स में 30 डिग्री के आसपास रहेगा आज मैक्सिमम टेम्परेचर.
8: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
9: Manoranjan with Ravi Sharma.
10: चिंतन चिंतन.
0: जी हाँ, आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद रेडियो जो है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स. और इस शो में आज मैं रितु शर्मा आपके साथ हूँ, सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी. 11:03 हुए हैं और सुनते हैं अब चिंतन यानी कि आज का विचार. आज के चिंतन में बात करने वाली हूँ सुख और दुख की. सुख और दुख हमारे जीवन के दो पहलू हैं जो हमेशा बदलते रहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रात के बाद दिन आता है. सुनाती हूँ एक छोटी सी कहानी. एक कहानी एक राजा जी की. एक बार की बात है, एक बहुत ही प्रतापी राजा थे और उनके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था. भाई राजा थे तो किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी उन्हें एक बात की चिंता हमेशा सताती थी कि जब बुरा वक्त आएगा तो वो खुद को कैसे संभालेंगे। उन्होंने एक दिन अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान मंत्री को बुलाया और उससे कहा, मुझे कोई ऐसा मंत्र या सूत्र दो जो बहुत छोटा हो लेकिन मेरे सबसे सुख और सबसे दुख जो समय आए उन दोनों समय में मेरा मार्गदर्शन कर सके। अब राजा ने कहा था तो मंत्री राजा की बात कैसे टाल सकता था। मंत्री ने कहा, महाराज कुछ दिन दीजिए, मैं आपको अवश्य बताऊंगा। और कुछ दिन सोच विचार करने के बाद मंत्री ने राजा को एक सोने की अंगूठी भेंट में दी और मंत्री ने कहा, महाराज इस अंगूठी के रत्न के नीचे एक छोटा सा कागज का टुकड़ा है और इस टुकड़े में एक गुप्त मंत्र लिखा है, लेकिन इसे आप तभी खोलकर देखना जब आप अपने जीवन के सबसे गहरे संकट में हो या फिर आप अत्यधिक अहंकार या फिर सुख में डूबे हो। राजा ने मंत्री की बात मान ली और उसे पूरा यकीन था, पूरी उम्मीद थी कि मंत्री ने उसे जरूर कुछ ऐसी बात बताई होगी जो उसे उस परेशानी से निकालने में मदद करेगी। समय बीतता गया। कुछ वर्षों के बाद पड़ोसी राजा ने राजा के महल पर अचानक हमला कर दिया और राजा युद्ध हार गए और उन्हें अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागना पड़ा, लेकिन शत्रु के सैनिक उनके पीछे पड़े थे। राजा भागकर एक पहाड़ी के किनारे आकर फंस गए। उन्होंने देखा कि आगे गहरी खाई थी और पीछे दुश्मनों के घोड़ों की आवाजें। राजा बहुत निराश हुए, बहुत डरे और तभी उन्हें मंत्री की दी हुई अंगूठी की याद आई। उन्होंने उस रत्न को हटाया और उस पर्ची को निकाला और जब उस पर्ची पर पढ़ा तो जानते हैं उस पर्ची पर क्या लिखा था। उस पर लिखा था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। जैसे ही राजा ने ये शब्द पढ़े उनके मन को एक अजीब सी शांति मिली। उन्होंने अपनी घबराहट पर काबू पाया और कुछ ही देर में दुश्मनों के घोड़ों की आवाजें दूर चली गईं, जिससे वो घबरा रहे थे और उन्हें एहसास हुआ कि सैनिक उन्हें ढूंढे बिना ही आगे निकल गए थे और राजा की जान बच गई थी। राजा अपनी जान बचाकर जैसे तैसे एक सुरक्षित जगह पर इकट्ठा हुआ। उसने अपनी सेना को फिर से इकट्ठा किया और दोबारा युद्ध लड़ा और इस बार युद्ध में राजा की जीत हुई। जब जीत कर राजा वापस अपने महल में लौटे तो पूरे राज्य में उनका भव्य स्वागत हुआ। चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही थी। राजा गर्व और अहंकार से भर गए थे कि उन्होंने अपनी खोई हुई खुशियां, खोया हुआ राज्य वापस पा लिया था। और दिन अच्छे से बीत रहे थे, लेकिन तभी भीड़ में खड़े हुए उस बूढ़े मंत्री ने राजा को धीरे से इशारा किया, क्योंकि मंत्री को लग रहा था कि राजा बहुत अहंकार में भर चुके हैं और ये समय आ गया है कि वो उस अंगूठी की तरफ दोबारा देखें। राजा ने मंत्री की बात मानते हुए उस अंगूठी को दोबारा देखा और मुस्कुराते हुए अंगूठी से एक पर्ची निकाली और उसे फिर से पढ़ा और फिर से उस पर्ची में वही लिखा था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। और ये पढ़ते ही राजा का अहंकार गायब हो गया। उसे समझ आ गया कि ये सुख, ये वैभव, ये जीत हमेशा के लिए नहीं है और वो शांत और विनम्र हो गए। यानी कि जीवन में जब बहुत बड़ा दुख आए तो निराश ना हो, क्योंकि वो हमेशा रहने वाला नहीं है। और उसी तरह जब जीवन में बहुत बड़ा सुख या सफलता मिले तो घमंड ना करें, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती है। सुख और दुख दोनों ही मेहमान हैं, जो आते हैं और जाते हैं, और ये आते रहेंगे जाते रहेंगे। किसी ने कितना खूबसूरत लिखा है कि चाहे छाई हो काली रात या हो खुशियों की बरसात, मन में रखना बस एक बात, क्या कि ये वक्त भी गुजर जाएगा।

0: आगे सुख तो पीछे दुख है, और ये प्रकृति का सबसे बड़ा नियम है। जीवन की गाड़ी इन्हीं दो पहियों पर चलती है। किसी ने देखिए कितना खूबसूरत लिखा है कि सुख के पीछे दुख खड़ा, दुख के पीछे सुख, चलता रहा उम्र भर ये जीवन का रुख। जैसे चिलचिलाती धूप के बाद ठंडी छांव अच्छी लगती है, वैसे ही दुख झेलने के बाद सुख का आनंद दो गुना हो जाता है। अगर जिंदगी में कभी दुख ना आए तो हमें सुख की असली कीमत कभी पता ही नहीं चलेगी। इसीलिए याद रखिए कि जब सुख आगे चल रहा हो तो पीछे से आ रहे दुख से डरना नहीं है, बल्कि सजग रहना है। और जब दुख आगे चल रहा हो तो ये भरोसा रखना है कि उसके पीछे सुख अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। और सच्चा विजेता वही होता है जो इन दोनों के बीच में शांत रहकर जीवन जीना सीख जाता है। और यही था आज का चिंतन, आज का विचार, जिसे आप में से बहुत सारे साथियों ने पसंद किया है। थैंक यू आज के चिंतन के लिए। सही कहा है गिरीश जी, हमें हर परिस्थिति में सम रहना चाहिए, ना तो खुशी में अहंकार से भर देना चाहिए अपने आप को, ना गम में दुखी होकर कुछ गलत काम करने के बारे में सोचना चाहिए। थैंक यू राजेश जी, आपका भी मैसेज मिला है। कहते हैं मैं शुरू से ही प्रोग्राम में जुड़ा हुआ हूँ, आपका एक और खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया चिंतन बहुत सुंदर लगा। और आपने लिखा है कि हमारी जिंदगी में बदलाव हमेशा रहते हैं और वर्तमान से निपटना भी बहुत जरूरी है। थोड़ा सा हंस के, थोड़ा सा रुला के, बहुत खूब। थैंक यू राजेश जी, जगदीश जी बुशी से, थैंक यू भावना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी आज का चिंतन पसंद आया। कहते हैं कभी सुख कभी दुख, दुख सुख अपना साथी है, बिल्कुल सही कहा, और इसी का नाम जीवन है। अनिल सोनी जी थैंक यू, रोहित जी थैंक यू, थैंक यू विशाल, महेंद्र बजारिया, भारती दीदी, मिसेस पेकेचियान, रागिनी जी, अर्जुन जी, जितने भी साथी साथ दे रहे हैं सभी का स्वागत है। और समय हो गया है चिंतन को समेटने का और आगे बढ़ जाने का। थैंक यू आज के चिंतन को पसंद करने के लिए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज £1 के बदले में आपको मिलेंगे 124.5 भारतीय रुपए। और याद रखिए ये ट्रांसफर हमेशा की तरह आपको करवाना होगा वाया SBI ब्रांच ऑनलाइन बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। लेकिन जून के एंड से पहले आप जीत सकते हैं £75 का वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर £1,000, ऑल्सो 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर £2,000। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Leica Gold.
3: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: तो आपको बताते चलें कि आज स्विट्जरलैंड कनाडा के बीच में मैच होने वाला है। ग्रुप सी में मोरक्को हेटी, ग्रुप सी में एक और मैच है स्कॉटलैंड और ब्राजील के बीच में, तो मैच आप देख ही रहे, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी याद दिला दें कि बिल्कुल मत भूलिए अपना 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद अवर स्पॉन्सर रैक लॉ जब आप मेंशन करते हैं लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
2: Ye hai
3: Leica Gold.
2: Leica Gold.

0: देखिए आप भी अपना ख्याल रखिए, मौसम गर्म है, नहीं तो आपको भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप में से किसी को कुछ भी हो। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमारे यहाँ से बजने वाले गीतों को एंजॉय करते रहें। जैसे कि आपके मैसेजेस मिले हैं मुझे बहुत सारे। मानसी जी कहती हैं फैबुलस डुएट, ये गाना आपको पसंद है, आपके नाम किया। एंड गिरीश जी कहते हैं ये गाना मुझे दे दो, मैंने आपको दिया गिरीश जी। उसके अलावा ढेरों मैसेजेस मिले हैं, आप सबने चिंतन को पसंद किया है। थैंक यू अर्जुन जी, उल्लास जी, रागिनी, थैंक यू। ये मैसेज भेजा है श्रेया ने। श्रेया कहती हैं कि लोग कहते हैं कि आपकी आवाज़ जूही चावला से मिलती है, लेकिन आगे सुख तो पीछे दुख है। इस गाने को सुनकर मुझे लग रहा है आपकी आवाज़ कविता से मिलती है, कविता कृष्णमूर्ति से। तो श्रेया, अगर जूही से मिलती है या कविता कृष्णमूर्ति से मिलती है, जिससे भी मिलती है, मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि दोनों ही बहुत प्यारी हैं दोनों ही बहुत पॉपुलर हैं और दोनों ही बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। तो किसी अच्छे इंसान से, किसी अच्छे आर्टिस्ट से कुछ भी मिलता है तो ये अच्छी बात है। सो थैंक यू आपके प्यार के लिए, थैंक यू श्रेया हमेशा साथ देने के लिए। और इसके अलावा हंसा जी, यस रोहित आपकी हाजिरी लग गई है। भरत जी, राजकुमार जी, थैंक यू। किरण जी, थैंक यू। और एक बहुत ही अच्छी सी बात हमारे साथ, एक मजाक शेयर किया है नरेंद्र पांचाल जी ने, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी, मैं ढूंढती हूँ। लेकिन उससे पहले जल्दी से अलका जी धन्यवाद, फरीदा जी बहुत बहुत धन्यवाद, और भावना जी, विशाल, बहुत सारे मैसेजेस, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फिलहाल एक गाना सुनवा देती हूँ।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
2: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
4: अभी न जाओ छोड़ कर

0: दिल तो मेरा भी नहीं भरा है, इसलिए मैं अभी नहीं जा रही हूँ। अभी एक बजे तक यही आपके साथ रहूंगी और इस पूरा वीक आपके साथ रहूंगी और अगला पूरा वीक भी आपके साथ रहूंगी। इसलिए चिंता की बात नहीं है, लेकिन मैं भी चाहूंगी कि आप भी मुझे छोड़कर कहीं ना जाए, साथ देते रहे। थैंक यू तोशी जी, इतनी प्यारी प्यारी बातें कहने के लिए, हमेशा ही अपना आशीर्वाद देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, अपनापन देने के लिए। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, या कहूँ माँ की कमी पूरी हो जाती है। थैंक यू तोशी जी। और इसके अलावा केतकी जी, आप भारत में प्रोग्राम सुन रही हैं और कहती हैं मैंने कल का चिंतन मिस कर दिया था और मैंने लिसन बैक सुनने की कोशिश की, मैं कर नहीं पाई। तो मैं आपको बता दूँ, बहुत आसान है, आप लिसन बैक पर सुन सकते हैं हर किसी प्रोग्राम को। और उसके लिए आप या तो ऐप पर सुन सकते हैं, आपको ऐप डाउनलोड करना होगा, या फिर आप ऑनलाइन जाकर भी सुन सकते हैं। और जब आप ऐप पर जाते हैं या ऑनलाइन जाते हैं, तो वहाँ पर साइड में आपको 3 लाइंस दिखेंगी, उस पर टच कीजिए। आप अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो किसी छोटे बच्चे या यंग बच्चे जो स्कूल कॉलेज में जाते हैं, आजकल के बच्चे एक्सपर्ट्स हैं, तो वो आपको बता देंगे। सो इजी, क्योंकि मैं कैसे करके दिखा दूं। तो मैं यही कहूंगी कि जो घर में है ना बच्चे, उनसे ज़रा पूछिए, वो आपको बताएंगे, बहुत आसान है। और इसके अलावा मैसेज में पढ़ने वाली हूँ नरेंद्र पांचाल जी का, ये अपना एक्सपीरियंस सुना रहे हैं। कहते हैं, ऋतु आज सवे सवेरे मेरी वाइफ ने मुझे लगभग 3 घंटे में 5 ग्लास ठंडा पानी पिला दिया। तो मैंने उससे पूछ लिया कि क्यों भाई, आप आज बड़ा केयर कर रही हैं मेरी, क्या बात है। तो जानते हैं वाइफ क्या बोली? तो वाइफ बोलती है, कुछ ज़्यादा ही गर्मी है और मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं अपने मनी प्लांट का ध्यान रखूं। क्या बात है, वेरी गुड नरेंद्र पांचाल जी, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है।
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: Leica Extra podcast update.
0: तो अगला गीत सुनाने से पहले आपको हम याद दिला दें कि लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट का नया एपिसोड ड्रॉप हो चुका है और इसका टाइटल है साउथ एशियन वुमेन इन स्पोर्ट्स, जिसे होस्ट किया है दीप राजा ने। और आप लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट सुन सकते हैं स्पॉटिफाई पर, यूट्यूब पर, अमेजन पर और जितने भी मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर अवेलेबल है लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट।
4: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर, गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
5: When you're facing a serious snack dilemma, Tesco Whoosh has you covered.
6: Dave, we're out of peanuts.
5: We hear you, footy fan. Your Whoosh driver is already on it, delivering anything you need from Tesco from as little as 20 minutes. Because no team player can support from the sofa without nibbly bits. Tesco Whoosh, for when you seriously need groceries fast. Fees apply. Delivery times range from 20 to 60 minutes. Selected areas only. Pricing specific to Whoosh. See tesco.com/whoosh.
7: ये है
8: लाइका गोल्ड।
9: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
10: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
11: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
12: विजिट travelhubworld.com.
13: Packed for the trip? Gifts? Passport?
14: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
13: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
14: Simzy?
13: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
15: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's S-I-M-Z-Y.com. T's and C's apply.
11: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
16: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
11: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
16: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgage.co.uk.
11: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you. Dreaming of owning a property in Dubai? Now you don't need to fly thousands of miles to explore the opportunity. Dubai's leading real estate experts are coming to Quality Foods Hayes from the 27th to the 30th of June. Discover luxury investment options, exclusive registration waivers, residency support, and an incredible 0.25% monthly payment plan. Visit the Dubai Real Estate Stand at Quality Foods Hayes. Your future in the sun could start right here. 27th to the 30th of June. See you at Quality Foods Hayes.
15: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
17: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
15: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
17: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
15: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
17: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
15: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
18: Hi, hello, kecho, mucho, kechi, dawayana, ashu, tego, arara, public demand, hariti, ahi, rechu, London, maru, nau, natak, laine, patni, Premier League, etleke, PPL, yes, from 3rd July till 12th of July, wow, and this is being presented by Pankaj Soda Galaxy Shows, yaad rakhjo.
19: Patni Premier League, shows at Risley, Alberton, East and South London, Lower Home, Leicester. For more information, call Deepa on 07947561947.
20: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસમાં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે.
19: બીએપીએસ મંદિરનું ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર.
20: યુરોપના 3-9 દિવસના ટૂર્સ,
19: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
20: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
19: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે.
20: કોલ 02089002323 ધ સ્ટાર ટૂર્સ.
19: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.
21: ચાય બ્રેક હો યા બિઝી વર્ક ડે, સબકો ચાહિયે એક પરફેક્ટ કપ ઓફ ચાય.
22: ઓર અબ રોયલ ચાય લાયે હૈ સ્માર્ટ solution for your business.
21: Get a Royal Chai vending machine free. Perfect for cafes, restaurants, offices, shops, petrol stations or community spaces.
22: Rich, authentic taste every single time.
21: Royal Chai, brewed for business.
22: Email now info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
19: London, good news! Aapka favorite iTech ab TRS Cash and Carry South Hall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. Full iTech at Unit 123 South Bridge Way, South Hall, UB2 4AX. Once you visit, you come again and again.
4: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Like a Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB Digital Radio par. Alexa pe bolo play Like a Gold aur online suno likeagold.com pe.
23: Cool music for a super hot summertime on the Like a Radio Network.

0: पावरफुल ट्यून लता जी और किशोरदा की आवाज़ों में। फिल्म का नाम जमीन आसमान, जिसमें अनीता राज थी, साथ में थे संजय दत्त, और जिसे आपने सुना आपके मनपसंद रेडियो से। आपके ढेरों मैसेजेस मिलते जा रहे हैं। थैंक यू दिनेश पोपट जी, थैंक यू प्रदीप पोपट जी, भारती जी, हितल सोलंकी, थैंक यू एनलका जी, आपने हमें याद दिलाया है कि जितने भी साथी लिसन बैक सुनना चाहते हैं, तो ये बात ज़रूरी है बता दूं कि लिसन बैक पे जो गाने होते हैं वो इमीडिएटली नहीं आते हैं। आपको कम से कम 4-5 घंटे या एक दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। एटलीस्ट 3-4 आवर्स तो लगते हैं उसको वहाँ अपलोड करने में, तो नेक्स्ट डे आपको आराम से मिल जाएगा। अभी जैसे ख़त्म हुआ और आप चाहें कि तुरंत सुन लें तो ऐसा नहीं हो पाएगा। एक दिन बाद सुनेंगे तो लिसन बैक में आपको मिल जाएगा सुनने के लिए। सो बस ये थी बात जो मैं आपको बताना चाहती थी, इससे पहले कि भूल जाऊं।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज ये 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 124 भारतीय रुपए, 366 पाकिस्तानी रुपए एंड 161 बांग्लादेशी टकास।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: LIKA Gold.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is £99.7 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
4: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
5: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
6: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
7: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
6: Southall Travel.
7: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
6: Southall Travel can take you there.
8: Southall Travel, auto protected.
9: Welcome to the jungle.
10: Film bilkul fake.
9: Hamari film army wali.
11: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है।
10: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो।
9: और स्टारकास्ट है
10: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यूथ स्टारकास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास।
12: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
10: वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास 26 जून।
13: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना
14: मैं किस लिए फिल्म में?
10: Location, location, location.
15: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
10: Introducing Greens by Daniel.

0: Star Express presents Hariharan's Soul India.
1: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
0: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
1: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
2: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एस रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में. रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमरस्मिथ. हमारे राम.
1: बुक योर टिकट्स नाउ ऑन eventimapollo.co.uk एंड यूज कोड हमारे राम 10 फॉर 10% डिस्काउंट ऑन ऑल शोज एंड टिकट.
2: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक रेडियो.
3: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे. कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस. कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3444-24-hour line.
4: Khakra crunch, bhakri munch, chikki sweet, papad beet, pickles heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
5: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, namkeen, papad, pickles, chikki, pot meals and much more.
4: Jaimin Foods desi cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
6: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ. आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे, जहां मळशे शांति, भक्ति अने आनंद, अने साथे आईफिल टावर, सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद माणो. डिपार्चर 5 सितंबर ना. मंत्रा हॉलिडेज, कॉल करो 0203-773-6333. मंत्रा हॉलिडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा.
7: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
8: Spring into the sunshine on Leica Radio Network.

0: यस, ये थी आवाज किशोर दा की और उससे पहले लता जी और बाबला मेहता की आवाजों में चांदनी फिल्म का गीत। और इस गाने को सुनकर दिनेश ने वेलिंगटन से मैसेज भेजा है, कहते हैं ये मेरा फेवरेट गाना है। चलिए दिनेश जी, हमने ये गीत आपको डेडिकेट किया। नरेंद्र पांचाल जी, आप गीतों को पसंद कर रहे हैं, थैंक यू। और एक और मैसेज आया है पिंकी जी का, लिखती है कि मैं लाइका गोल्ड सुन रही हूँ हॉस्पिटल वटफर्ट में और आपको गाने अच्छे लग रहे हैं, साथ मेरा अच्छा लग रहा है, सो थैंक यू। और आपने चाहा है कि मैं आपकी दो नीज को अगला गीत डेडिकेट कर दूँ। एक का नाम है पूनम, जो कि किचन मास्टर शेफ हैं, वहाँ पर काम कर रही हैं, और दूसरी है रेनू, जिनकी की अभी अभी फुट की सर्जरी हुई है। तो भाई रेनू, आपको गेट वेल सून कहते हैं और आपकी आंटी पिंकी की ओर से अगला गीत आपको डेडिकेट करते हैं, जो है हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक वाला गाना। और प्रज्ञा, आपने भी कहा है कि ऋतु, ये गाना बजाकर आपने भी मुझे मजबूर कर दिया कि मैं आपको मैसेज करूं। मैं आपको बिल्कुल मजबूर करना चाहती हूं, मैं चाहती हूं कि आप मुझे मैसेज करें और बताएं कि हम आपको सुन रहे हैं या फिर आपको मेरा साथ कैसा लग रहा है।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो वन पाउंड आज आपको देगा 124.5 भारतीय रुपए, लेकिन हमेशा की तरह याद रखें कि ट्रांसफर आपको करवाना होगा बाय एसबीआई ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग दी योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। और जून के खत्म होने से पहले आप जीत सकते हैं 75 पाउंड्स का वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1000 पाउंड्स, ऑल्सो अ 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 पाउंड्स। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Gold.
2: Are we there yet?
3: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
4: Relax, I've booked the Uber already.
3: How? My roaming isn't even working yet.
4: I switched to Simzy before we left London.
3: Simzy? Since when are you the tech expert?
4: Since I decided I want a stress-free holiday.
5: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
6: T's and C's apply.
7: Kajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
8: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
7: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
8: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
7: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
8: Visit Kajal's Couture. .co.uk.
9: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
10: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
11: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
10: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
11: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915 or visit cashbackremortgages.co.uk.
10: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
12: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
13: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well-planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
2: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
14: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
2: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
15: Every parent wants their child to grow up healthy. HPV, the human papillomavirus, is a common infection that most people don't even know they have. However, it can lead to cancer in men and women. The HPV vaccine can stop this and is available for every child from age 12 and offers long-term protection with just one jab. Say yes to cancer prevention. Make an informed choice. Find out more at nhs.uk/HPV or contact your school immunisation team.
16: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting, but it's as simple as DLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/DLC.
17: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
18: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: जितेंद्र की फिल्म कारवां से लिया था ये गाना, जिसमें उनके साथ हीरोइन थी आशा पारेख और ये फिल्म सुपर डुपर हिट थी। और इस तरह की बहुत सारी सुपर हिट फिल्म्स का हिस्सा रहे हैं जितेंद्र, लेकिन उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि कभी भी उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। 60 सालों में उन्होंने 200 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है, लेकिन उनके काम के लिए जी ने, स्क्रीन ने, फिल्म फेयर ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ज़रूर दिया है, लेकिन किसी फिल्म के लिए एज ए बेस्ट एक्टर अवार्ड जितेंद्र ने कभी भी नहीं पाया। लेकिन लोगों के दिलों में उन्होंने जगह बनाई है, बहुत सारे लोगों के वो फेवरेट एक्टर रहे हैं और उनकी फिल्मों के बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो हमारे सबके दिलों के करीब हैं। ये गाना भी बड़ा मस्ती भरा गीत था, जिसे आपने सुना आपके मनपसंद रेडियो से। आपके मैसेजेस मुझे लगातार मिलते जा रहे हैं। विजय गुनोवा जी, शुभ दोपहर आपको भी। वरुण, विनोद जी आप साथ दे रहे हैं, थैंक यू थैंक यू। और बस थोड़ी देर का और बचा है हमारा और आपका साथ, थोड़ी ही देर में आपकी बात करवाएंगे हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट कमल प्रभाकर जी से, लेकिन उससे पहले एक और गीत हो जाए।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: आरडी बर्मन के म्यूजिक पर ब्यूटीफुल गाना फिल्म द ट्रेन से, जिसमें राजेश खन्ना के साथ थी नंदा जी, और ये 70s की फिल्म थी। लेकिन अगर आप 90s की फिल्मों के सुपरहिट गाने या कुछ क्लासिक गाने सुनना चाहते हैं तो हम आपको बता रहे हैं।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो आपको याद दिलाने जा रहे हैं कि लेजेंडरी हरिहरन यूके आ रहे हैं, उनका शो है रॉयल फेस्टिवल हॉल में, यूके फॉर सोल इंडिया एट रॉयल फेस्टिवल हॉल लंदन। ये सब कुछ होने वाला है सैटरडे 4 जुलाई को। टिकट्स अवेलेबल है southbankcenter.co.uk पर, और इसके एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स हैं लाइका रेडियो नेटवर्क।
1: लाइका गोल्ड, ये है लाइका गोल्ड।
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.
0: और अब अगला गाना आप सभी की पसंद पर मुकेश जी की आवाज में।

0: मुकेश जी की आवाज में क्लासिक गाना 1962 की फिल्म आशिक से लिया था।
1: Holiday breaks are brought to you by South All Travel.
0: और एक बार फिर से याद दिला दें कि भाई समर है, हॉलीडे पर जाना चाहते हैं तो साउथ ऑल ट्रैवल से कांटेक्ट कीजिए। और अब तो देखिए दुबई जाने के लिए जो रेस्ट्रिक्शंस थे वो भी हट चुके हैं, तो आप साउथ ऑल ट्रैवल के साथ ट्रैवल कर सकते हैं फॉर द मोस्ट कॉम्पिटिटिव दुबई डील्स के लिए बुक करा सकते हैं। और उन्हें फ़ोन कीजिए 0208574 8410 पर। ऑल एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: Holiday breaks were brought to you by South All Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: When you're facing a serious parenting dilemma, Tesco Whoosh has you covered.
3: Babe, we're running low on nappies.
2: We hear your cry, Sarah. And theirs. Your Whoosh driver is already on it, delivering anything you need from Tesco from as little as 20 minutes. Because no new parent should have to face a poon army without backup. Tesco Whoosh, for when you seriously need groceries fast. Fees apply. Delivery times range from 20 to 60 minutes. Selected areas only. Pricing specific to Whoosh. See tesco.com/whoosh.
4: ये है
5: लाइका गोल्ड
6: ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208782883 और विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम
7: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
8: एट ऑल प्रोटेक्टेड
7: Visit travelhubworld.com.
9: Great news, Thadikalal Raiders Lane is now open. Come and grab our incredible opening offers. Fresh chicken legs for just £2.99 per kilo or 5 kilos for only £10. But hurry, this amazing deal is available while stocks last. Plus, you'll find plenty of more fantastic offers in store. Visit us today at Thadikalal Raiders Lane, 287 Raiders Lane, Pinner, HA5 5EJ. Quality, value and freshness only at Thadikalal Raiders Lane.
10: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
10: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
11: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
10: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 02 0 3963 5757. Greens by Daniel. Prime location.
10: High appreciation.
11: In Dubai.
10: London, you asked and it's happening. Aditya Gadvi Garba Tour UK 2026. Watford Colosseum on Saturday 8th August is now sold out. But due to huge public demand, one more show has been added at the same venue. Watford Colosseum on Friday 7th August 2026. Leica Radio Network is proud to be the exclusive radio partner. Aditya Gadvi live in London. Book now on AXS. Aditya Gadvi live in London at Watford Colosseum. Book now.
12: The future belongs to creators. At RoboThink Summer Camps, children build robots, learn coding and future-ready skills. Leica listeners get 10% off full week bookings with code LEICA10. Kit package worth over £7,500. Visit book.robothink.co.uk/Leica.
13: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई। Experience the ultimate escape, 25 unforgettable days across Australia, breathtaking New Zealand and paradise in Fiji. 2 departures November and February, it's the holiday of a lifetime. First 10 bookings get 300 off. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111.
14: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as DLC. Touch, look, check. Touch your breasts. Look for any changes. Check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/DLC.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
4: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं. ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा. संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com. Tasty Track of the Hour brought to you by Coca Noodles.

0: लता जी और मोहम्मद रफी साहब की आवाज में था ये कमाल का गाना। और ये फिल्म जब आई थी ना 1976 में, बहुत बड़ी हिट फिल्म हुई थी और एक एक गाना इतना पॉपुलर था तब भी और आज भी। मदन मोहन का म्यूजिक था, साथ में जयदेव थे, दोनों ने मिलकर इस फिल्म में म्यूजिक दिया था जो सुपर डुपर हिट हुआ था। एंड मानसी जी, आपको ये गाना अच्छा लगा, थैंक यू। हरीश रुदा कहते हैं बाहर बहुत गर्मी है, आई नो बाहर बहुत गर्मी है, फिलहाल तो मैं आराम से एसी में बैठी हुई हूँ। एंड कमल प्रभाकर जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, तो बस उनसे बात का सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अनीता जी, आपको मुकेश जी का गीत बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। थैंक यू ज्योति गिरी शाह जी, थैंक यू मिसेस पेके चियांग, थैंक यू उन सभी को कहना चाहती हूँ जो सुबह से अब तक मेरा साथ दे रहे हैं। और अब जाने की वेला बहुत जल्द आने ही वाली है, लेकिन जाने से पहले
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors. Women's Cricket Updates, presented by Carmel Prabhakar, are brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
2: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. RoboThink.co.uk/Leica.
0: तो क्रिकेट की बात के बिना मैं कैसे जा सकती हूँ। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट कमल प्रभाकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं आज क्या खबर लाए हैं हमारे लिए। हेलो कमल जी, आज क्या लाए हैं आप हमें बताने के लिए।
3: हेलो रितु जी, कैसे हो?
0: बहुत अच्छी, आप बताएं।
3: बस मैं बार्बाडोस में हूँ, ऐसे लग रहा कि बार्बाडोस में गर्मी आ गई लंदन में।
0: ओके,
3: सो वी आर वेरी मच इन लंदन और वी गॉट अ बिग मैच टुडे, होम ऑफ क्रिकेट जो लंदन में है, लॉर्ड्स में। लॉर्ड्स में आज गेम, बहुत बड़ी गेम है, इंग्लैंड अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, और वो 6:30 बजे स्टार्ट होगी। एज यू नो इट्स वेरी वेरी हॉट एट द मोमेंट, यू नो इट्स गोइंग टू बी, आई होप इट काम्स डाउन अ बिट लिटिल लेटर फॉर द प्लेयर्स सेक एंड द सपोर्टर्स सेक। द सपोर्टर्स हैव बीन एक्सेलेंट, दे हैव कम इन हंड्रेड्स ऑफ देम अराउंड अदर मैचेस अदर प्लेसेस, बट दिस इज अ क्रूशियल मैच बिकॉज वन इज प्लेइंग टू, सो इंग्लैंड 6 points, वेस्ट इंडीज 6 points, जो भी जीतेगा तो उनको 2 point और मिलेंगे। सो वी लुक फॉरवर्ड टू अ ग्रेट ग्रेट गेम, इट्स गोना बी अ गुड डिस्प्ले एंड अ गुड स्पिरिट ऑफ क्रिकेट एंड इट्स गोना बी वेरी स्किलफुल बिकॉज इंग्लैंड इज अ वेरी पावरफुल साइड एंड वेस्ट इंडीज आर द डार्क हॉर्सेस एंड दे आर प्रीटी गुड एज वेल। सो ये हॉट हॉट गर्मी से है, लेट अस होप दे विल हैव अ लॉट ऑफ ब्रेक्स इन बिटवीन, but good luck to both of the teams and we'll give you updates as we go today.
0: Thank you Kamal ji, thank you, take care, bye bye.
1: This update was brought to you by TW Pays. Visit twpays.com/Leica for a chance to win a free card terminal. T's and C's apply.
2: And RoboThink. This summer, give your child a head start in AI, robotics and coding. Places are limited. Save 10% on full week summer camp bookings with code LEICA10 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
4: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज £1 आपको देगा 124 भारतीय रुपए, 366 पाकिस्तानी रुपए एंड 161 बांग्लादेशी टकास।
1: Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply.
5: LEICA Gold.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is £99.7 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
4: Hit
5: there, मैं हूँ बाली ब्रह्मट. Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Like a Gold and Like a Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.

0: लीजिए, आशा भोसले और किशोरदा की आवाजों में था ये गाना। और बस अब आ गई है जाने की बेला, यानी कि जुदा होने का समय आ गया है। लेकिन फिकर नॉट, कल हम और आप एक बार फिर से मिलेंगे। एंड थैंक यू सो मच आज के गीतों को पसंद करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। और आपको बता दूं कि मेरे बाद बाली ब्रह्मभट्ट आपका साथ देंगे। लेकिन अगर आप इस शो को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लिसन बैक पर जाकर सुन सकते हैं। अगर आप लाइका गोल्ड 2 भी सुन सकते हैं जिसमें नॉन स्टॉप क्लासिक्स बजते हैं, लाइका पंजाबी सुन सकते हैं जिसमें ढेर सारे पंजाबी गीत होते हैं एंड 90s के गीतों के दीवाने हैं, तो आपके लिए है लाइका गोल्ड 90s बैक टू बैक। जो मर्जी आइए वो सुनिए, हमारा साथ बस देते रहिए। और मौसम आज बहुत गर्म है तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अगला गीत लेकर चलेगा न्यूज तक और मैं आपसे मिलूंगी कल फिर से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।
1: Like a gold.
2: Location.
1: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
1: located in Dubai in a

0: रख ली। हेमंता ने गाया, लता मंगेशकर ने उनको साथ दिया, ममता फिल्म, रोशन का संगीत, मजरू सुल्तानपुरी की लिरिक्स।
1: Forgotten memories refreshed like a gold.
0: Evergreen song of film Jangli, Raag Yaman Kalyan. Suniyega Lata Mangeshkar ko.

यू आर राइट, रफी साहब का वर्जन बाय लता मंगेशकर, वेरी हाई पिच्ड राग, यमन कल्याण, शंकर जयकिशन। फिल्म है परवरिश, गाया मुकेश जी ने, आंसू भरी है ये जीवन की राहें, म्यूजिक डायरेक्टर दत्ताराम, हसरत जयपुरी की लिरिक्स के साथ, राग यमन कल्याण।

और आखिर में राग यमन कल्याण, फिल्म सरस्वती चंद्र। यस यू आर राइट, चंदन साबदन। कल्याण जी आनंद जी ने कंपोज किया, इंदिवर जी ने लिखा।

0: across London. This is Bally Brambat on Like a Gold.
1: हमको फसाना बन गया अच्छा
2: अच्छा जी
1: एक बहाना बन गया अच्छा
2: अच्छा

0: Set Co-Food Containers Total Satisfaction.
1: Search is changing.
2: Customers aren't just using Google anymore.
1: They're asking AI.
2: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
1: One business, one recommendation.
2: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
1: Will your business be the answer?
2: Or the one that got left behind?
1: The future of search has already started.
2: Have you? Visit HeartyHanks.com and make sure AI recommends you.
1: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
3: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
4: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 0203 7736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा।
5: टीचर्स, ट्यूटर्स और एजुकेटर्स के लिए एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी रोबोथिंक यूके एक्सपैंड कर रहा है। बिकम अ कंफर्म्ड फ्रेंचाइज पार्टनर एंड रिसीव अ रोबोटिक्स किट पैकेज वर्थ ओवर £7,500। पेरेंट्स कैन आल्सो सेव 10% ऑफ ऑन फुल वीक समर कैंप्स विद कोड LAIKA10। विजिट book.robothink.co.uk/LAIKA।
6: लंदन, गुड न्यूज, आपका फेवरेट आईटेक अब TRS कैश एंड कैरी साउथ हॉल में। ह्यूज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. Full iTech at Unit 123 South Bridge Way, South Hall, UB24AX. Once you visit, you come again and again.
7: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com। कॉल 0208-767-7627।
8: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting, but it's as simple as TLC. Touch, look, check. Touch your breasts. Look for any changes. Check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
9: Have you noticed the way fans shout at football matches?
10: Oh, wake up!
9: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
11: LAIKA Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
12: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: जो बोलो तो मानो गुरु तुमको मानो, व्हाट अ लवली ट्रैक, कह दूं तुम्हें, फ्रॉम द सुपर हिट मूवी दीवार. ऑफ कोर्स दिस सॉन्ग इज अमेजिंग बट दिस मूवी वाज आल्सो सुपर्ब. क्या प्यारी वाली डायरेक्शन थी. आई मीन अमिताभ बच्चन एंड शशि कपूर का जो यू नो भाइयों वाला प्यार एंड देन दैट टकराव. आई स्टिल रिमेंबर, भाई तुम साइन करते हो या नहीं, एंड देन अमिताभ बच्चन इन हिज़ वॉइस सेज़, जाओ उससे साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था. व्हाट अ लवली मूवी. आई मीन आई थिंक ये अमिताभ बच्चन की एक मूवी है जो मैं कभी भी देख सकता हूँ. सुपर सुपर सुपर एंटरटेनिंग. आई एम वीर इन फॉर द लवली सैनिशा ऑन अ गोल्ड ड्राइव.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: So £1 in British sterling can get you up to 124 Indian rupees, 366 Pakistani rupees, 442 Sri Lankan rupees, 161 Bangladeshi taka, 83 Afghani afghans, 170 Kenyan shilling and approximately 1.31 US dollars.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply. LEICA Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. With the UK's biggest Asian hits. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, poojasweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So gold's trading at £98.07 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, poojasweets.com, or visitors at East Ham, Hounslow or Crowley.

0: गुम है किसी के प्यार में, दिस अमेजिंग वाला गाना एंड द वोकल्स ऑफ लता मंगेशकर एंड किशोर दा. एक और लवली ट्रैक दिस आवर, बट यू स्टे ट्यून्ड बिकॉज आई विल बी विद यू नेक्स्ट आवर विद सम अमेजिंग ट्रैक्स.
1: Tune in to Leica Gold, London's number one Asian retro station on the Leica Radio mobile app.
2: सावन का महीना पवन करे सोर

0: आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आया. दिस लवली ट्रैक इन द वोकल्स ऑफ नाजिया हसन फ्रॉम द सुपर हिट मूवी कुर्बानी. आई मीन जीनत अमान वाज लुकिंग सो सो सो प्रीटी इन द सॉन्ग. फिरोज खान एंड विनोद खन्ना. आई लव्ड अमजद खान इन दिस मूवी एज वेल.
1: ये है लाइका गोल्ड लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट.
0: Laika Extra's newest podcast is on South Asian women in sports, and this is hosted by Deep Raja. Breaking barriers in a male-dominated field, why representation matters. Laika Extra podcast available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple, and other major streaming platforms.
1: Laika Extra is here. This is Laika Gold. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
2: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
2: विजिट TravelHubWorld.com.
3: Kajal's Couture for every celebration, every moment, and every unforgettable entrance.
4: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
3: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewelry, accessories, and stylish outfits for men and women.
4: Plus, Laika listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
3: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
4: Visit kajalskachor.co.uk.
5: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे. कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस. कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3444-24-hour line.
6: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસમાં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે.
7: બીએપીએસ મંદિરનું ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર.
6: યુરોપના 3-9 દિવસના ટૂર્સ
7: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
6: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
7: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે.
6: કોલ 0208900-2323 ધ સ્ટાર ટૂર્સ.
7: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.
8: sonatours.co.uk. This September, witness the opening of the BAPS Mandir in Paris on a 4 or 5 day tour. Book your journey of blessings and sightseeing with Sonatours. Call 0208-951-0111.
9: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
10: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
11: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
10: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
1: लाइक रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन. Laika Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at laikaradio.com and the Laika Radio mobile app.
12: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. From Europe to faraway places, the same delicious Indian food. Wherever you go, that's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: महबूब मेरे, दिस प्यारा वाला गाना इन द वोकल्स ऑफ मुकेश साहब एंड लता मंगेशकर. वन मोर लवली ट्रैक दिस आवर, बट यू स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ आई विल बी विद यू नेक्स्ट आवर.
1: Like a Radio 90s, Like a Radio Punjabi, Like a Gold 2, now available on the Like a Radio mobile app and Alexa.

0: सिरीन हॉलीडेज अपने पूर्व अफ्रिकाना स्थलों की मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे। कंपाला, नाइरोबी, मुंबासा, जांजिबार अने दारेसलाम साथे जिंजा अने मचिसन फॉल्स।
1: बस पैक करो अने रिलैक्स थई जाओ।
0: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे। वधु माहिती माटे
1: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
0: 0116266481 पर। वधु माहिती माटे लॉग इन करो sirenholidays.co.uk पर।
2: लंडन मार्क द डेट 25th of June।
3: समथिंग ट्रूली एक्साइटिंग इज ऑन द वे।
4: द ऑथेंटिक Taste of India is finally coming to Leicester Square in central London.
2: Yes, Haldiram is opening 25th of June in London.
4: From Raj Kachori to Chole Bature to Pao Bhajis,
3: Parathas, sweets and so much more. All the flavours you've missed from India are coming right here to London.
2: Haldiram's opening 25th of June
4: at Leicester Square, central London.
5: Haldiram's.
6: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
6: high appreciation.
5: In Dubai.
7: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
8: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
7: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk. Show hosted by Bina Mistry.
8: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
9: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208890880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
6: London, you asked and it's happening. Aditya Gadvi Garba Tour UK 2026.
10: Lattuke halo ne nandala.
6: At Watford Colosseum on Saturday 8th August is now sold out. But due to huge public demand, one more show has been added at the same venue.
10: Meetha khara, khara.
6: Watford Colosseum on Friday 7th August 2026. Laika Radio Network is proud to be the exclusive radio partner. Aditya Gadvi live in London. Book now on AXS. Aditya Gadvi live in London at Watford Colosseum. Book now.
11: बिजनेस के कार्ड पेमेंट चार्जेस देख के कभी सोचा है, यार मैं कहीं ज्यादा तो नहीं दे रहा? पता लगाने का एक ही तरीका है, अपना लेटेस्ट स्टेटमेंट TW Pays को भेजिए और 24 आवर्स में पाइए एक फ्री कंपैरिजन कोड। विजिट twpays.com/laika या कॉल कीजिए 0203129-9840। TW Pays, हर ट्रांजेक्शन पर ज्यादा बचत।
12: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
13: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as TLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
14: Ashwini, in for Anisa Nasir on The Evening Show on Laika Gold.
15: हाय, मैं हूँ अश्विनी। हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइका गोल्ड रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी। फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग आप सभी के लिए।

0: ये शाम मस्तानी है ना, ये एक्चुअली शाम मस्तानी, इतने प्यारे प्यारे गाने ओनली ऑन योर फेवरेट रेडियो स्टेशन लाइका गोल्ड. दिस लवली ट्रैक फ्रॉम द मूवी कटी पतंग इन द वोकल्स ऑफ किशोर दा. वेल इट्स टाइम फॉर मी टू से बाय, बट यू गिव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू अश्विनी हु इज अप नेक्स्ट.
1: लाइका गोल्ड, part of the largest Asian commercial radio network in the UK.

0: travelhubworld.com. travelhubworld.com.
1: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
2: Travel Hub.
1: At all protected.
0: Leica. On Leica Radio Network.

0: भाई जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइक अ गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। हाय हाय गर्मी, उफ उफ गर्मी, हाय हाय मिर्चे तो हम बोल ही नहीं सकते। तुमको भी गर्मी ने मारा, हमको भी गर्मी ने मारा। ओके चलिए, हो गई गर्मी, है गर्मी, ठीक है चलते हैं। वी आर यूके पीपल, हम जैसा जो मौसम आता है उसके साथ में हम लोग एडजस्ट कर जाते हैं, लेकिन आज आज नहीं, आज प्लीज़ हाइड्रेटेड रखिए अपने आप को। तो भाई अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुका है, सारे के सारे धुरंधर आ रहे हैं, फटाफट अपनी अपनी जो हाजिरी यहाँ पे लगवा रहे हैं। और मैं पूछ रही हूँ अपने मैसेजेस में आप सबसे कि कैसे हैं आप सब, और आप सभी हाय हाय गर्मी उफ उफ गर्मी के नारे लगा रहे हैं। तो बिल्कुल वो एक मीम भी आया ना जो सब जगह अभी एक्चुअली लोग सर्कुलेट कर रहे हैं कि सूर्य देवता को सब कह रहे हैं कि भाई अगर सच में दम है तो दिसंबर में हमारे यहाँ पे आके दिखाओ एक्चुअली। ओके आज आज है फील गुड वेंसडे, मिड वीक पहुंच गए, दो दिन इधर दो दिन उधर, एंड दिस इज माय फेवरेट डे ऑफ द वीक। हमेशा की तरह असाइनमेंट कुछ ना कुछ तो देने वाली है अश्विनी, आज की असाइनमेंट क्या होगी? चलो थोड़ा सा एक रैंडम सा क्वेश्चन और थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं, गर्मी से खुद को अब डिस्ट्रैक्ट करते हैं। थोड़ा ध्यान से सोच समझ के मुझे बताइएगा, जरा याद कीजिएगा, टाइम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा एक घंटा इस असाइनमेंट के लिए आपको देती हूँ, अगर जल्दी याद आ जाए तो जल्दी लिख देना। बहुत ही वियर्ड सा गिफ्ट आपको किसी ने दिया होगा, मुझे मेरे बर्थडे पे किसी ने वेट वाइप्स गिफ्ट दिया है। सोचा क्यों ना आप सबको भी पूछा जाए कि मेरी कैटेगरी में और कौन कौन है जिनको बहुत ही ऐसे वियर्ड सा गिफ्ट मिला है। ठीक है, दैट इज़ टुडेज असाइनमेंट, और बहुत ही फैंटास्टिक ट्रैक्स आप लोगों के लिए लाइंड अप है। वॉल्यूम अप रखो और अपने आप को गर्मी से डिस्ट्रैक्ट करो।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: For £1 in British sterling, you can get up to 124 Indian rupees and 20 paise. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, 1 gram of gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Laika Gold, 10:35 a.m.

0: की बनूं हंस फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में।
1: यादों की बारात,
2: यादों की बारात।
3: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
4: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
5: जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ। इट्स 36 मिनट्स पास्ट 7 एंड लाइफ की किसी न किसी थियोरी के बारे में हम रोज बात करते रहते हैं। आज की थियोरी है द बॉइलिंग फ्रॉग थियोरी। अगर आपने नहीं सुनी है तो दिस विल बी समथिंग न्यू फॉर यू, अगर सुनी है तो मे बी एक रिविजन हो रहा है आप सभी के लिए। द बॉइलिंग फ्रॉग थियरी, आप किसी फ्रॉग को, किसी मेंढक को ठंडे पानी में डालो तो आराम से उसमें तैरते रहेगा, और वही ठंडा पानी, वही पैन जब आप किसी स्टव या गैस पे रख दो और उसे धीरे धीरे बॉइल करना शुरू कर दो, बिकॉज उस फ्रॉग को उस ठंडे पानी में रहने की आदत होती है। वो सोचता है ठीक है, हल्का फुल्का पानी अभी गर्म है, मैं कूद जाऊंगा। फिर पानी गर्म होते जाता है, गर्म होते जाता है, और वो इतना गर्म हो जाता है कि वो फ्रॉग जो है उस गर्म पानी से बाहर कूद नहीं सकता, एंड एट द एंड बिकॉज ऑफ द बॉइलिंग टेम्परेचर ही डाइस। तो क्या कहना चाहती है अश्विनी, लाइफ की कौन सी थियरी के बारे में बात कर रही हूँ? टॉक्सिक एनवायरमेंट के बारे में मैं बात कर रही हूँ। कई बार रिश्तों में, कई बार जो भी आपका रिश्ता है, चाहे घर, परिवार, दोस्त, कलीग्स, ऑफिस, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, जो भी रिश्ता है, धीरे धीरे डिसरेस्पेक्ट शुरू होता है, धीरे धीरे इंसल्ट शुरू होती है, धीरे धीरे मनमुटाव शुरू होता है। और चलो ठीक है, रिश्ता है, छोड़ दो, चलो ये चीज़ें होती रहती है, छोड़ दो। बट देन एक बार आप जब किसी को अलाउ कर देते हो, देन इट कीप्स ऑन मल्टीप्लाइंग एंड एक ऐसी लिमिट आ जाती है दैट यू फील कि शायद पहले ही मैंने जंप कर लेना चाहिए था इससे बाहर। बॉइलिंग फ्रॉग थियरी बहुत सारी चीज़ों में हमारे लिए हेल्प करती है, ना केवल रिश्तों में लेकिन ज़िंदगी के बहुत सारे डिसीजंस में भी हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होती है। कई बार ज़िंदगी में हम अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, फिर जॉब में लग जाते हैं, पैशन होता है म्यूज़िक का, एक्टिंग का, कोई भी दूसरा पैशन समझ लीजिए, पर जॉब में चले गए, फिर धीरे धीरे धीरे धीरे उस दुनियादारी में फंसते गए, और फिर इतने फंस गए कि उसमें से बाहर ना निकल पाए। बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ मैं, आप तक जो भी इसका मतलब पहुँचता है समझ लीजिए, दैट इज द बॉइलिंग फ्रॉग थियरी।
1: ये है लाइका गोल्ड, द इवनिंग शो विद अश्विनी।
6: नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ, मंडे टू फ्राइडे जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच, मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा।
3: Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
7: Reinforcements, army definition, extra troops or supplies deployed to strengthen an existing force. Football definition. Bringing three world-class players off the bench at 60 minutes. You're already speaking our language. You belong here. Search Army Jobs.
3: This is Ashwini, in for Anissa Nazir, on The Evening Show.
6: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
8: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
6: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
8: विजिट travelhubworld.com।
5: www.lyca.com.
8: London, mark the date, 25th of June.
9: Something truly exciting is on the way.
10: The authentic taste of India is finally coming to Leicester Square in central London.
8: Yes, Haldiram is opening 25th of June in London.
10: From Raj Kachori to Chole Bhature to Pav Bhajis,
9: Parathas, sweets and so much more. All the flavours you've missed from India are coming right here to London.
8: Haldiram's opening 25th of June
10: at Leicester Square, central London. Haldiram.
11: Kajal's Couture. For every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
12: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
11: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
12: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
11: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
12: Visit kajalscouture.co.uk.
3: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhujar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram.
8: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code Hamari Ram 10 for a 10% discount on all shows and tickets.
3: Exclusive radio partner, Leica Radio.
13: Dreaming of owning a property in Dubai? Now you don't need to fly thousands of miles to explore the opportunity. Dubai's leading real estate experts are coming to Quality Foods, Hayes, from the 27th to the 30th of June. Discover luxury investment options, exclusive registration waivers, residency support, and an incredible 0.25% monthly payment plan. Visit the Dubai Real Estate Stand at Quality Foods, Hayes. Your future in the sun could start right here, 27th to the 30th of June. See you at Quality Foods Hayes.
14: London, good news. Aapka favorite iTech ab TRS Cash and Carry South Hall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. For iTech at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB24AX. Once you visit, you come again and again.
15: You know how fans shout at football matches?
16: Oh, wake up!
15: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
3: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
17: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. Coach, Eurostar, your flight. Aap choose karo, apna style. Baki sab, Star Tours experience sambhal leta hai. Visit startours.co.uk.

0: वेलकम, दिस इज द सेकेंड आवर ऑफ द इवनिंग शो विद अश्विनी। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। क्या बात है, कितने मेलेडियस ट्रैक्स थे ना दोनों भी, पर्वत से काली घटा, दैट वाज आशा भोसले विनोद राठौड़ की आवाज़ में, चांदनी फिल्म से लिया था आप सभी के लिए वो गीत सोनी मेरी, आई जस्ट लव दिस, अनवर एंड आशा भोसले की आवाज़ में सोनी महिवाल। 1984 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। एज आई सेड, अमेजिंग प्लेलिस्ट आप सभी के लिए है। फील गुड वेंसडे में कौन सा गीत लाई हूँ अभी नहीं, कुछ देर बाद जरूर बताएंगे। नेक्स्ट ट्रैक इज कि भाई अपनी, अगर अपने आप को बहुत टिप टॉप वे में अगर कैरी करना है तो बाल कैसे रखने चाहिए, शर्ट कैसे पहनना चाहिए, शागिर्द फिल्म का ये आगे वाला गीत आप सभी के लिए काफी अच्छा गाइडेंस देगा। Seven stations, £1 in British sterling can get you up to 124 Indian rupees and 20 paise. And send money to India via SBI Yono app or branch before end of June. And be in to win £75 voucher every day when you send over £1,000. Also 1 gram of gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Gold.

तू में हाथ डाल ए गुल चेहरा परी जमान मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा जा

0: वेल, स्विट्जरलैंड और कनाडा के बीच ग्रुप बी में मैच शुरू हो चुका है। 23 मिनट्स हो गए हैं, दोनों टीम में से किसी ने भी एक भी गोल अभी तक नहीं दागा। बोस्निया और कतार के बीच ग्रुप बी में मैच शुरू हो गया है। 22 मिनट्स हो गए हैं, अभी तक किसी ने भी गोल नहीं दागा। ग्रुप सी में मोरक्को और हैती के बीच में मैच शुरू होगा 11 बजे। स्कॉटलैंड एंड ब्राज़ील के बीच मैच शुरू होगा 11 बजे। And remember, you can get 15 minutes free legal advice with our sponsors, Rock Law, if you mention Laika.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: We've all been there. Noisy uni flatmates. Music blaring. Phones going off in the library. But with long-lasting battery life on the lightweight and portable Dell XPS powered by Intel Core Ultra, you can get away from the distractions without needing to find a plug. So you can get back to, well, built for those who get things done. The Dell XPS. Built for you. Dell.co.uk/learning.
1: This is Ashwini, in for Anissa Nazir. On the evening show.
3: Great news, Tade Kalal Rainers Lane is now open. Come and grab our incredible opening offers. Fresh chicken legs for just £2.99 per kilo or 5 kilos for only £10. But hurry, this amazing deal is available while stocks last. Plus, you'll find plenty of more fantastic offers in store. Visit us today at Tade Kalal Rainers Lane, 287 Rainers Lane, Pinner, HA5-5EJ. Quality, value and freshness only at Tade Kalal Rainers Lane.
4: पत्नी प्रीमियर लीग शोज एट राइस लीग अल्बर्टन ईस्ट एंड साउथ लंदन लोन होम लेस्टर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दीपा ऑन 0794756947
5: वेलकम टू द जंगल
4: फिल्म बिल्कुल फेक
5: हमारे फिल्म आर्मी वाली
6: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है
4: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो
5: और स्टार कास्ट है
4: अक्षय कुमार सुनील शेट्टी अर्षद वारसी परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास
7: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या
4: वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास 26 जून
8: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना
9: मैं किस लिए फिल्म में
10: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
10: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
11: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
10: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 02 0393635757 Greens by Daniel Prime Location
10: High Appreciation
11: in Dubai
12: Europe और UK के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा Holidays के साथ travel कीजिए दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले Scottish Highlands Snowdonia के अफसानवी landscapes और stunning coast of Cornwall को explore कीजिए आपका सफर होगा majestic Swiss Alps से लेकर romantic Paris और timeless beauty of Italy के through
13: visit mantraholidays.co.uk or call 02037736333 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
14: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
1: Laika Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LaikaGold.com. Feel good track.
9: Brought to you by Dairy Valley.
15: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Ye hai Like a Gold. Ashwini in for Women's Cricket Updates, presented by Carmel Pumaka and brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
2: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. robothink.co.uk/Leica.
3: क्रिकेट अपडेट्स के लिए आपको सीधे ले चलते हैं कमल प्रभाकर जी, जो हैं हमारे क्रिकेट करस्पोंडेंट। तो कमल जी, आज की इतनी चिलचिलाती धूप और गर्मी के साथ क्रिकेट का क्या माहौल है, वहां कितनी गर्मी छाई है?
4: गुड इवनिंग फ्रॉम द होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड में। इट इज सो गुड, इट वाज वेरी वेरी हॉट, आई मस्ट एडमिट, एट 6:30 तो इट वाज बॉइलिंग हॉट स्टफी and but we got a very good crowd, so hat off to the crowd. But the players, they have played amazing good cricket. So England batted first and they batted superbly and really gave a score that is going to be hard to chase, but then you never say till the last ball is bowled, so West Indies will chase that. But what it is more than that, the cricket has been playing at a very high standard, and you know, the runs they need, the bowling is so good, and the people around here is amazing. So West Indies need 175 to win in 17 overs, and it's just, you know, amazing cricket. Honestly, you can't tell that is it the men's playing or the women's playing. So, and I'll tell you one more thing. I've got with me a great gentleman, you know, his name is Vic Patel, and his hospitality is best to none, and I'm in his box. So, good evening, Vic. How are you?
5: Hi, good. Enjoying the hot weather.
4: How do you think about this cricket, women cricket? Where is it today?
5: I think it's amazing. It's in Lords, as we're the Middlesex sponsors, so we can go to the Lords games. It's international. And women's cricket is amazing today. I mean, some of the people here, if I was not knowing it's a women's game, I wouldn't know the difference.
4: Yeah. So you said that's a big high standard 100%. Of game. Yeah. Well, Vic from IBC, thank you. So you can hear, I mean, there's shouting, there's good, there's music, but the picture, what looks at Lords is amazing. Always a pleasure to be at Lords. Thank you,
3: Kamalji. That was really interesting to hear that the audience are enjoying the cricket in spite of this, the heat which is there in the UK. And still, you said the stadium is cheering up the cricketers there. And please take care of yourself. Aapse kal phir se baat hogi.
4: Thank you so much. Have a great evening.
3: Thank you.
0: This update was brought to you by TW Pays. Visit twpays.com/Leica for a chance to win a free card terminal. T's and C's apply.
2: And RoboThink. This summer, give your child a head start in AI, robotics and coding. Places are limited. Save 10% on full week summer camp bookings with code LEICA10 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
3: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 37 मिनट्स पास्ट 8। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। जहां दुनिया जहां में गर्मी है, वॉर है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो वहीं बात करते हैं हैप्पीएस्ट कंट्रीज के बारे में। तो फिनलैंड इज ऑफिशियली रैंक द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, होल्डिंग द टॉप स्पॉट फॉर कंसेक्यूटिव ईयर्स अकॉर्डिंग टू यूएन स्पॉन्सर्ड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। द रैंकिंग्स आर लार्जली डिटरमाइंड बाय एनालाइजिंग द जीडीपी पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, हेल्दी लाइफस्टाइल एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम, जनरोसिटी एंड ट्रस्ट इन द गवर्नेंस। तो फिनलैंड है इस हैप्पीएस्ट कंट्रीज की लिस्ट में। फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, कोस्टारिका, स्वीडन, नॉर्वे, नेदरलैंड्स, इजराइल, लग्जमबर्ग एंड स्विट्जरलैंड है। हम यहाँ पे है ही नहीं, हे भगवान। खुश रहो, है ना, खुश होना सीखना पड़ेगा। तो ये बाकी ये जो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कंट्री हैप्पीएस्ट होती है, आप और हम उसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जरूर देखेंगे। चलते हैं इमोशन ऑफ द डे के तरफ। बड़ा ही फैंटास्टिक ट्रैक आप सबके लिए लाई हूँ मेरे जीवन साथी से, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। इट्स फील गुड वेंसडे फॉर ऑल ऑफ यू ऑन द इवनिंग शो विद अश्विनी।
0: ये है लाइका गोल्ड।
6: Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट. Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Like a Gold and Like a Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.
7: Emotion of the day.
8: Emotion.

0: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है, 8:50, इट्स 8:50. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. And this is the evening show with Ashwini. Monday से Friday तक शाम 7 से 10 रहता है आपका और मेरा साथ. आज गर्मी की वजह से आप सब बहुत परेशान हुए. जी हाँ, बस धीरे धीरे गर्मी कम होने वाली है. कल और 30s में टेम्परेचर एंड उसके बाद में धीरे धीरे 20s में थोड़ा टेम्परेचर जाने वाला है. अपने आप का ख्याल रखिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए. अगर सच में ज़रूरत ना हो बाहर निकलने की तो ना निकले, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और हमारी जो अंडरग्राउंड ट्रेन्स जो होती हैं वो इतनी खचाखच भरी होती है लोगों से, एंड पीपल आर फेंटिंग बिकॉज पानी भी नहीं है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम्स हो रही हैं. सो अनटिल एंड अनलेस आपको ज़रूरत है कि भाई बाहर जाएं, तो घर में बैठ के ठंडी पंखे की हवा लीजिए और अपने आप का खूब ख्याल रखिए. देखिए ना, 24th of June इस साल का मिड आ गया एंड इस साल के मिडवे हम लोग आ चुके हैं. तो आपने जो भी एम्स एंड टारगेट्स बनाए थे खुद के लिए, क्या उस डायरेक्शन में आपने काम शुरू कर दिया है? 6 महीने बाकी है ये साल ख़त्म होने के लिए. 2026 बहुत बहुत स्पीड में ये साल निकल रहा है, ऐसे मुझे लग रहा है. इज़ इट ओनली मी कि आप लोगों को भी लग रहा है कि नहीं नहीं सच में ये साल बहुत ज़्यादा स्पीड में भाग रहा है? क्योंकि व्हाट इज़ कांस्टेंट इज़ चेंज, है ना, चेंज होते रहती है चीज़ें, कुछ भी बाकी और कांस्टेंट नहीं है. हमें लगता है हम इतने ही ऐसे ही रहेंगे, नो वी ऑल चेंज. अच्छे टाइम है तो वो भी, मतलब यू नो, उसके लिए हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड में रहना चाहिए. बुरा टाइम चल रहा है तो ये निकल जाएगा, है ना, बस हिम्मत रखिए, क्योंकि हिम्मत ही हमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पड़ाव पे लेके पहुंचाती है जहाँ पे हमें लगता था, और जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि अरे यार मैंने तो ये टाइम निकाल लिया, है ना. एंड लाइका मीडिया आप सभी का साथ देता है आपके मनोरंजन के लिए. इतनी सारी वेरिएशन वाली प्रोग्राम्स हैं, इतने सारे प्रेजेंटर्स हैं, इतने हमारे रेडियो चैनल्स हैं, एंड साथ में आपकी और हमारी जो इंटरेक्शन होती है उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है. चलिए चलते हैं आखिरी गीत की तरफ.
1: Midlands, Manchester. This is the Leica Radio Network. This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show.
2: Kajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
3: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
2: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
3: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
2: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
3: Visit Kajal's Couture.
4: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
5: देखिए, दुबई की शान. फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग,
4: डेजर्ट सफारी,
5: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम.
4: साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे.
5: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410. दैट्स 8574-8410.
3: साउथहॉल ट्रेवल.
6: ફાધર સન નો બોન્ડ જેટલો સ્પેશિયલ છે એટલી જ સ્પેશિયલ ફિલ્મ આવી રહી છે.
7: અંકલ તમે પહેલાથી આવા જ છો.
8: આવા એટલે કેવા?
6: ધર્મ પ્રોડક્શન્સ પ્રેઝન્ટ્સ જિંદગી વન્સ મોર.
8: મારો બાપ બનવાની કોશિશ કરે તો બુદ્ધિ વેચી આવે છે તું. અરે જિંદગી એવી મોજ થી જીવજે કે જિંદગી ખુદ તને આવી ન પૂછે.
6: આ ફાધર્સ ડે ફીલ ધી ઇમોશન્સ, લવ એન્ડ ફેમિલી મોમેન્ટ્સ વિથ જિંદગી વન્સ મોર ઇન સિનેમાસ ઓન 19 જૂન. ફોર મોર ઇન્ફોર્મેશન વિઝિટ બકરાનિયા મીડિયા ઓન ઇન્સ્ટાગ્રામ.
8: તો થઈ જાય જિંદગી વન્સ મોર.
9: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
10: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
9: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
10: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
9: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
10: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
9: Offer valid from the 4th of May to the 30th 5th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
11: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
12: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
13: द इवनिंग शो विद अश्विनी।
1: Another huge giveaway is coming. Like a

0: स्वागत है आप सभी का. दिस इज द थर्ड आवर ऑफ द इवनिंग शो विद अश्विनी. तो बहुत ही बेहतरीन गीतों के साथ हमने आगाज किया इस आखिरी आवर का. आईना फिल्म से कुमार सानू और आशा भोसले की आवाज में मेरी सांसों में तुम, एंड उसके बाद अभिनेत्री फिल्म से ये बड़ा मजेदार गाना लगता है मुझे, लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार की आवाज में. ये शशि कपूर पे फिल्म आया गया था एंड उनके साथ में हेमा मालिनी, राइट, अभिनेत्री फिल्म में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. लिख के भेज दीजिएगा अगर आपको याद आ रहा हो तो. आगे और बहुत ही अमेजिंग गीत लाइनअप है. आज मैं गज़ल सुनाऊंगी या कव्वाली, ज़रा लिख के भेजिए. नेक्स्ट ट्रैक जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो बरसात की एक रात से सुनाऊंगी, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में.
1: Ashwini, brightening up your weeknights. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: For £1 in British sterling, you'll get up to 124 Indian rupees and 20 paise. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, 1 gram of gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.

0: Football Score Updates, brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
1: ग्रुप में स्विट्जरलैंड एंड कनाडा के बीच मैच हो रहा है. 60 मिनट्स हो चुके हैं. स्विट्जरलैंड ने 2 गोल्स दागे. बोस्निया एंड कतार के बीच मैच हो रहा है. 56 मिनट्स हो गए. बोस्निया ने बनाए 2 गोल्स, कतार ने बनाया 1 गोल. मोरक्को और हैती के बीच में मैच शुरू होगा एट 11 PM. स्कॉटलैंड एंड ब्राज़ील के बीच मैच शुरू होगा एट 11 PM. एंड डोंट फॉरगेट, यू कैन गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद आवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइक.
0: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
1: अब हो जाए कुछ ऐसी गुड न्यूज़ विच इज़ अराउंड द वर्ल्ड. चाहे गर्मी हो, वॉर हो, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी चल रही हैं अराउंड द वर्ल्ड जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए. मैनी कंट्रीज नाउ ट्रीट मेंटल हेल्थ एज पार्ट ऑफ हेल्थ केयर रादर देन अ पर्सनल वीकनेस. फॉर द फर्स्ट टाइम इन डेकेड्स एंटार्क्टिका गेन्ड मोर देन 100 बिलियन टन्स ऑफ आइस इन सिंगल ईयर. योर डॉग हैज मेमोराइज योर कार्स साउंड, योर लाफ्टर्स रिदम and even the instant of your heart drops to them, you are everything. तो बस मतलब मेरे यहाँ पे मेरी डॉग जो खुश हो जाती है गाड़ी घर पे पहुँचते सी रात में. I know she is barking because she knows that मैं घर पे पहुँच चुकी हूँ. Now I understand. A new injectable therapy teaches immune cells to identify and attack cancerous tumors, marking a major breakthrough in cancer treatment. A groundbreaking genetic therapy has given hearing to a girl who was born deaf, showing yet again how science transforms lives. बहुत सारी अच्छी न्यूज़ जब हमें सुनने मिलती है तो बड़ा अच्छा लगता है कि चलो कुछ पॉजिटिव दुनिया जहाँ में हो रहा है. फिर पॉजिटिव हमारे आसपास भी होते रहता है. इट्स जस्ट दैट कि हमारी नज़र, एक तो ऑब्जर्वेशन और दूसरा हमारा नज़रिया. क्या ख्याल है, ज़रा बताइए.
0: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: We've all been there. Noisy uni flatmates. Music blaring. Phones going off in the library. But with long-lasting battery life on the lightweight and portable Dell XPS powered by Intel Core Ultra, you can get away from the distractions without needing to find a plug. So you can get back to, well, built for those who get things done. The Dell XPS. Built for you. Dell.co.uk/learning.
0: This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show.
3: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
4: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
5: Two businesses.
6: Same town.
5: Same service.
6: One appears on page one of Google.
5: The other doesn't.
6: Guess which one gets the customer?
5: The truth is brutal.
6: The first page of Google gets the business.
5: Everyone else gets what's left.
6: So here's the real question.
5: When your customers search for what you sell, do they find you?
6: Visit heartyhanks.com and stop letting Google choose your competitors.
5: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.

0: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel Atto Protected.
3: Welcome to the jungle.
4: Film bilkul fake.
3: Hamari film army wali.
5: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है.
4: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो.
3: और स्टारकास्ट है
4: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्षद वारसी, परेश रावल एंड अ ह्यूज स्टारकास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास.
6: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
4: वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास 26 जून.
7: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना
8: मैं किस लिए फिल्म में?
9: थिंक यू माइट बी ओवरपेइंग फॉर कार्ड पेमेंट्स? Most businesses don't realize until they compare. Send your latest statement to TW Pays and get a free comparison quote with the reply within 24 hours. Visit twpays.com/Leica. TW Pays, helping businesses keep more of what they earn.
10: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
11: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English but louder.
12: 4 beers, please, garçon!
11: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
2: Like a goal. London का number one Asian retro music station अब available है Greater London में 10:35 AM पर DAB digital radio पर. Alexa पे बोलो play Like a Gold और online सुनो likeagold.com पे.
13: Artist of the week is brought to you by our new podcast Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: Feel Good Track. Brought to you by Derry Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug, Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
2: मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 31 मिनट्स पास्ट 9। आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। आर्टिस्ट ऑफ द वीक में जितेंद्र जी के गीत आप सबको हम सुना रहे हैं पूरे सप्ताह, और हर एक शो में आप आर्टिस्ट ऑफ द वीक सुनते हैं और आपको जीतू जी के गीत हम सुनाते हैं हर एक शो में। दिस ट्रैक वॉज टेकन फ्रॉम कारवा फिल्म विच वॉज रिलीज्ड इन 1971। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में था ये गीत। भाई आज 24th of June मतलब किसी का बर्थडे एनिवर्सरी, कुछ तो स्पेशल किसी के लाइफ में हुआ रहेगा। वैसे ही स्पेशल कुछ मनाया जाता है, दैट इज़ इंटरनेशनल फेरी डे मतलब परी डे। एंड पीपल सेलिब्रेटेड दिस डे, इंटरनेशनल फेरी डे, बाय पार्टिसिपेटिंग इन वन ऑफ मेनी फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस दैट हैव फॉर्म्ड अराउंड द वर्ल्ड टू ऑनर दीज माइथिकल क्रीचर्स। हम सभी परियों की कहानियाँ सुन चुके हैं बचपन में, और शायद हुआ रहेगा कि कभी ना कभी ज़िंदगी में हम लोग परी बने होंगे। अब बॉयज़ कहेंगे भाई हम कहाँ से परी बने, हम तो परा बने होंगे। जी जो जी, ये इतने प्यारे प्यारे क्रीचर्स होते हैं ना, जिनके बारे में हम इतने इमेजिनेशन करते हैं जब हम छोटे होते हैं, और बहुत पॉजिटिव फील होता है। देखो अभी भी जब फेरी के बारे में अगर हम सोचे तो वो जो पंखों वाली फेरी होती है पॉजिटिव फील कराती ना, उसी की तो ज़रूरत है अभी हमें पॉजिटिव सोचने के लिए और फील करने के लिए। गज़ल, जिन्होंने कहा कि आज गज़ल सुनाएंगे, क्या अश्विनी पूछा और बताया। जी हाँ, आज गज़ल ही सुनेंगे और सुनाएंगे गुलाम अली की आवाज़ में, चुपके चुपके।
0: गज़ल

0: Sizzle. Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Ye hai Laika Gold. 10:35 AM.
3: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल. एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ. सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे.
0: दिस इज अश्विनी इन फॉर अनीसा नज़ीर ऑन द इवनिंग शो. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
4: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
4: विजिट travelhubworld.com.
5: The future belongs to creators. At RoboThink Summer Camps, children build robots, learn coding and future-ready skills. Leica listeners get 10% off full week bookings with code LEICA10. Kit package worth over £7,500. Visit book.robothink.co.uk/Leica.
6: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as DLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/DLC.
7: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
8: Kajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
9: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
8: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
9: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
8: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
9: Visit Kajal's Couture. .co.uk.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
10: The Evening Show with Ashwini.
0: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan, and Bangladesh swiftly from your phone.
11: For £1, you'll get 124.24 Indian rupee, 366.15 Pakistani rupee, 443.04 Sri Lankan rupee, 161.94 Bangladeshi taka, 83.55 Afghan Afghani, 170.52 Kenyan shilling, 1.31 US dollars.
12: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
12: Leica Gold.
0: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
11: Gold is currently trading at £97.67 per gram.
0: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
11: टिक टिक करते हुए घड़ी कह रही है, एक बार जरा टाइम चेक कर लें. इट्स 42 मिनट्स पास्ट 9. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. इस आवर के आखिरी दो गीत खानदान फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज़ में, एंड आखिरी गीत इस प्रेम पुजारी से.
13: दोनों ही गीत बड़े ही अमेजिंग. और दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी जो आप सुनते हैं मंडे से फ्राइडे तक हर शाम 7 से 10 बजे तक. यही कहेंगे भाई गर्मी बहुत है तो अपने आप का ख्याल रखें और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है उसे कॉम्प्लिकेटेड ना जाने क्यों हम लोग बनाते हैं. प्यार ही काफ़ी है तो प्यार दो प्यार लो. एंड पावर तो किसी को बर्बाद करने के लिए यूज़ किया जाता है. आई एम श्योर आप में से कोई भी अपने पावर का यूज़ नहीं करता होगा. गोल्ड नाइट्स हमारी ओवरनाइट सर्विस है उसे ज़रूर सुनिएगा. एंड साथ में हमारी काजल आती है सुबह 6 बजे तो उनका साथ दीजिएगा. उनकी उनका शो बड़ा ही एंटरटेनिंग होता है एंड आई रियली लव अवर शो ऑन दैट नोट. आई हैव टू से लव यू ऑल टेक केयर बाय.
14: लाइका गोल्ड. This superhit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable. Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. Chahe Europe ho ya duniya ka dusra kona, har trip feel hota hai the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: से।
1: ये है लाइका गोल्ड।
2: Great news, Tharikalal Rainers Lane is now open. Come and grab our incredible opening offers. Fresh chicken legs for just £2.99 per kilo or 5 kilos for only £10. But hurry, this amazing deal is available while stocks last. Plus, you'll find plenty of more fantastic offers in store. Visit us today at Tharikalal Rainers Lane, 287 Rainers Lane, Pinner, HA5 5EJ. Quality, value and freshness only at Tharikalal Rainers Lane.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
4: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग,
3: डेजर्ट सफारी,
4: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
3: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
4: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग।
5: कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
6: साउथ हॉल ट्रेवल Auto protected।
7: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3444 hour line.
8: Dreaming of owning a property in Dubai? Now you don't need to fly thousands of miles to explore the opportunity. Dubai's leading real estate experts are coming to Quality Foods Hayes from the 27th to the 30th of June. Discover luxury investment options, exclusive registration waivers, residency support, and an incredible 0.25% monthly payment plan. Visit the Dubai real estate stand at Quality Foods Hayes. Your future in the sun could start right here. 27th to the 30th of June. See you at Quality Foods Hayes.
9: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 0208-8839-0880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
10: आ सितंबर पेरिस में इतिहास लखाई रह्यो छे।
11: BAPS मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर।
10: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स,
11: फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली अने जर्मनी साथे,
10: दर्शन पण अने यूरोप पण।
11: सीट्स जल्दी भराई रही छे, आज ज बुक करो स्टार टूर साथे।
10: कॉल 0208900-2323 द स्टार टूर्स।
11: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
12: हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदाबहार गीत।

साहेब, ओ साहेब, पंछी पिंजरे से छूट गए, सब अपने वादे टूट गए, लो साहेब हमसे रूठ गए।

0: Gold Nights. This is Like a Gold. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
1: TravelHub, best service with unbeatable price.
0: At all protected.
1: Visit TravelHubWorld.com.
2: Location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
2: high appreciation
3: in Dubai.
4: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाईलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
5: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 020-3773-633 नाउ. एप्टा बॉन्डेड. मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा.
6: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
7: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
6: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
7: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
6: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
7: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
6: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
8: Eviction? Tenant dispute? Property ka masla? Kenton Solicitors London landlords or tenants ke liye fast action lete hain aur residential or commercial conveyancing plus commercial leases handle karte hain. Abhi call kare 0208-907-2444. That's 0208-907-2444.
9: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
0: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
10: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. Like a Radio और Like a Gold आपकी आवाज बन सकते हैं. On air हो, online या on ground, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा. संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@likeradio.com.
11: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर.

0: Gold. साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साफो ट्रेवल Auto protected.
1: Hi, hello, kecho, mucho, kechi, dabe ana, ashu chayo, arara, public demand, hariti aavi rahi chu, London maro navu natak laine, Patni Premier League, etle ke PPL, yes, from 3rd July till 12th of July, wow, and this is being presented by Pankaj Soda Galaxy Shows, yaad rakhjo.
2: Patni Premier League, shows at Risleaf, Alberton, East and South London, Lower Home, Leicester. For more information, call Deepa on 07947561947.
3: Chalo jaiye ek nava safar par,
4: सिरीन हॉलीडेज अपनी पूर्व अफ्रिकाना स्थलों की मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे। कंपाला, नाइरोबी, मुंबासा, जांजिबार अनि दार एस सलाम साथे जिंजा अनि मचिसन फॉल्स।
5: बस पैक करो अनि रिलैक्स थई जाओ,
4: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे। वधु माहिती माटे
5: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
4: 0116266481 पर। वधु माहिती माटे लॉग इन करो sirinholidays.co.uk पर।
2: फादर सन नो बॉन्ड जेटलो स्पेशल छे एटली ज स्पेशल फिल्म आवी रही छे।
6: अंकल तुम्हें पहले थी आवाज छो।
7: आवाज એટલે કેવા?
2: ધર્મા પ્રોડક્શન્સ પ્રેઝન્ટ્સ જિંદગી વન્સ મોર।
7: મારો બાપ બનવાની કોશિશ કરે તો બુદ્ધિ વેચી આવે છે તું? અરે જિંદગી એવી મોજ થી જીવજે કે જિંદગી ખુદ તને આવી ન પૂછે।
2: આ ફાધર્સ ડે ફીલ ધ ઇમોશન્સ, લવ એન્ડ ફેમિલી મોમેન્ટ્સ વિથ જિંદગી વન્સ મોર ઇન સિનેમાસ ઓન 19 જૂન। ફોર મોર ઇન્ફોર્મેશન વિઝિટ બકરાનિયા મીડિયા ઓન ઇન્સ્ટાગ્રામ।
7: સો થઈ જાય જિંદગી વન્સ મોર।
8: Dreaming of owning a property in Dubai? Now you don't need to fly thousands of miles to explore the opportunity. Dubai's leading real estate experts are coming to Quality Foods Hayes from the 27th to the 30th of June. Discover luxury investment options, exclusive registration waivers, residency support, and an incredible 0.25% monthly payment plan. Visit the Dubai Real Estate Stand at Quality Foods Hayes. Your future in the sun could start right here. 27th to the 30th of June. See you at Quality Foods Hayes.
9: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
10: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
9: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
10: And you didn't pay those massive roaming charges?
9: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
11: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
12: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

0: published in the British Journal of Sports Medicine.
1: This is Leica Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group.
2: बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर.

0: गाय का गोट।
1: लंदन, यू आस्क्ड एंड इट्स हैपनिंग। आदित्य गढ़वी गरबा टूर यूके 2026।
2: लटके हालो ने नंदला।
1: वॉटफोर्ड कोलोसियम ऑन सैटरडे 8 अगस्त इज नाउ सोल्ड आउट, बट ड्यू टू ह्यूज पब्लिक डिमांड वन मोर शो हैज बीन एडेड एट द सेम वेन्यू।
2: मीठा खारा
1: Watford Colosseum on Friday, 7th August 2026. Leica Radio Network is proud to be the exclusive radio partner. Aditya Gadvi live in London. Book now on AXS. Aditya Gadvi live in London at Watford Colosseum. Book now.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
4: साफो ट्रेवल Auto protected.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danu. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
7: Sari Raat, Bollywood classics ka saath. Sirf Leica Gold par.